0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से

0: अमीषा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमरीका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said that consequently approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariff and expanded trade between two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas kicked off at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand yesterday with contingents of 600 personnel each from the two countries participating. The exercise is simultaneously being conducted at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan also. Here's a report.
2: The exercise aims to enhance capabilities of both armies to conduct joint military operations in mountainous and semi-mountainous area with special emphasis on infantry-based operations. During the exercise, the two armies will exchange operational methods and strength of joint planning and operations. The training will include the use of drones and autonomous system for surveillance and reconnaissance. Modern weapon system will also be demonstrated at the Mahajan Field Firing Range. Experts from both armies will exchange views on emerging technologies and developments related to multi-domain warfare. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. He will hold bilateral talks with Foreign Minister of Bhutan, Leonpo Dien Dungyel. The External Affairs Minister will receive a royal audience with the King of Bhutan and call on the Prime Minister of Bhutan. The Ministry of External Affairs said the visit continues the tradition of regular high-level exchanges and to further strengthen the close ties of friendship and cooperation between India and Bhutan. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of September. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Nikolaevich Mordovichev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honor and pay tribute to fallen soldiers at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow. Saudi Arabia

FM गोल्ड 100.1 MHz पर मैं आ पहुंची हूं आपकी प्यारी सी दोस्त अमित कमल। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366 यानी 819 किलो हर्ट्स पर भी, और साथ ही इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी। दोस्तों, मुलाकात भी जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हो, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। इसलिए हम आ गए हैं आपसे मुलाकात करने और ढेर सारी बातें करने, और हमें है अपने रेडियो से प्यार।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना बात करते हैं डेज ऑफ द डे की, और आज है ओजोन परत दिवस, ओजोन लेयर डे। आधिकारिक रूप से दोस्तों इसे इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर सन 1994 को 16 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 16 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर हुए थे। इस दिवस का उद्देश्य केवल ओजोन परत के बारे में जानकारी देना नहीं बल्कि वैज्ञानिक चेतावनियों को वैश्विक नीतियों, तकनीकी बदलाव और जन भागीदारी में भी बदलाव करना है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवीबी विकिरण के बड़े हिस्से को अवशोषित करती है, और यदि यह सुरक्षा कमजोर हो जाए

त्वचा कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद तथा प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस साल इसका थीम दोस्तों है ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट। और साथ ही आपको बता दें कि जो आम जनता है वो भी ओजोन परत को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकती है। वो कैसे दोस्तों? आप कार्बन से युक्त चीजों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए नियमित तौर पर गाड़ियों की देखभाल आपको करते रहना चाहिए। रबड़ और प्लास्टिक की चीजों को जलाना नहीं चाहिए ताकि वातावरण में ये धुआं ना फैले और जो पृथ्वी के ओजोन लेयर है वो परत है वो ठीक रहे। वाहनों का कम से कम, अगर आप पैदल जा सकते हैं कहीं पर तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए। कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, इससे ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो उससे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही वृक्षों की कटाई ना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये वो चीजें हैं जिनसे आप एक योगदान दे सकते हैं। तो आज का सवाल हमारा यही है कि आप किस तरीके से पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए अपना योगदान देते हैं ओजोन परत को सुरक्षित रखने में। आप क्या योगदान देते हैं हमें मेल कर कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप ओजोन लेयर को बचाने के लिए अपना क्या योगदान देते हैं? तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और ये प्यारा सा गीत आपके लिए

दोस्तों, ये गीत आपने सुना गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। और दोस्तों, सवाल एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देते हैं। आज का सवाल है, आप ओजोन लेयर को बचाने में अपना क्या योगदान देते हैं? इसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए घर आंगन कार्यक्रम। आंगन कार्यक्रम चल रहा है और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीज ऑफ द डे की, और स्वास्थ्य की बात करना भी बहुत जरूरी है। आज एक और डे है, इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे, और ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य को पहचानने के लिए समर्पित है। ये दिन जागरूकता बढ़ाने और बचाने के लिए, जीवन को बचाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरवेंशनल कार्डियो एंजियोलॉजी स्वास्थ्य में सुधार करती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। पहली कैरोनरी एंजियोप्लास्टी 16 सितंबर सन 1977 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटजिग द्वारा की गई थी, और सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और संबंधित जटिलताओं के साथ ही रोकथाम और देखभाल के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मनाया जाता है। ये दिवस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हृदय रोगों और उनके निदान और उपचार में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये व्यक्तियों को प्रारंभिक पहचान और समय पर जानकारी हो जाने के बाद उन्हें बताता है किस तरीके से वो अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं। तो आप भी अपने दिल का ध्यान रखिए।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, हमने सवाल पूछा था कि ओजोन परत को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या योगदान देते हैं, और हमारे पास हमारे रेगुलर लिसनर हैं नवीन भाटिया जी। उनका मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि घर के पास वो पार्क में उसमें एक प्लांट अवश्य लगाते हैं, एक पौधा जरूर लगाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है नवीन भाटिया जी, ये प्रोत्साहित करने के लिए कि आप के अंदर वो जज्बा बाकी है कि आप भी कुछ योगदान करें पृथ्वी के लिए। तो दोस्तों, आप क्या योगदान कर रहे हैं ओजोन परत को बचाने के लिए, हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, डेज ऑफ द डे की बात कर रहे हैं हम, और आज एक और डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ। इसमें दोस्तों, ये जो डे है, अगर इसे हिंदी में समझें तो ये दक्षिणी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस कहा जाता है, और ये दिवस हर साल 16 सितंबर यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 जनवरी सन 2024 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये दिवस 16 सितंबर 2024 को मनाया गया था, और ये दिवस अमीर और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करने पर जोर देता है। साथ ही साथ ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को भी बताता है, और इस दिवस पर आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति। जिस बच्चे में साइंस के प्रति रुझान हो तो आप उसे प्रोत्साहित करें उनकी प्रति, और जिसमें ना भी हो तो उनके प्रति रुचि जगाने का प्रयास करें। उन्हें आप किताबें दे सकते हैं, किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जैसे बच्चे कुछ सवाल पूछें कि आकाश नीला क्यों होता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे बताएं, कैसे भी करके उसे बताएं, और साथ ही आसान तरीके से आप उन्हें साइंस से जुड़ने का प्रयास करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई डेज ऑफ द डे की, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्ताना फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, हमने सवाल पूछा था ओजोन परत को बचाने के लिए आप अपना क्या योगदान देते हैं। हमारे पास अनिल बेनीवाल जी का मैसेज आया है हिसार से। ये लिखते हैं, राम राम जी, पॉलिथीन का उपयोग कम करना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं। और साथ ही हमारे पास आया है चरण दास राजू अग्रवाल लंगाड़ी से, ये मैसेज लिखते हैं। ये लिखते हैं, ओजोन दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत गंभीर विषय है, बड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी सी खुशी होते ही हर इंसान खतरनाक पटाखे जो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण करते हैं उसे चलाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि पटाखों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। नवाब अहमद भारती हैं बल्लीमारान से, ये लिखते हैं, आरजे अमित कमल जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है, ओजोन से बचाने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और आपके द्वारा दी गई जानकारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो गीत बजा रहे हैं वो भी उन्हें पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद नवाब अहमद भारती जी। और सवाल एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सवाल है, आज है ओजोन लेयर दिवस, और आप किस तरीके से योगदान देते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। तो ये गीत आपके लिए।

छोटी सी बात फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड पर, और हमने सवाल पूछा था ओजोन लेयर को बचाने के लिए आप अपना क्या योगदान देते हैं, और हमारे पास डॉक्टर राजेश्वर राव जो शकरपुर दिल्ली से लिख रहे हैं, रिड्यूस कार यूसेजेस बाय वॉकिंग, बाइकिंग, कार पुलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ये लिख रहे हैं। और दोस्तों डेज ऑफ द डी की

करना चाहिए, ऐसा ये लिख रहे हैं। और दोस्तों डेज ऑफ द डी की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक संगीत का वो दौर जब दूर दूर तक किसी महिला गायिका का नाम तक नहीं आता था, तब एक महिला, एक ऐसा सितारा चमकी जिनका नाम था MS सुब्बलक्ष्मी, जिनका गायन के क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि आधुनिक भारत की वो मीरा है। एक बार उन्होंने कहा था कि हरि तुम हरो जन की भीड़, इस मीरा भजन को श्रीमती सुब्बलक्ष्मी बोल भी दें तो वो भजन किसी और के गाने से ज्यादा सुरीला हो जाएगा। वो ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आज डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी की जयंती है। सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा पूरी कर ली थी। 10 साल की उम्र तक पहुंचते हुए उनका पहला डिस्क रिकॉर्ड भी कर लिया था, और 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला संगीत भी पेश किया था। सुब्बलक्ष्मी ने कई भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए, इनमें मलयालम, पंजाबी भी शामिल है। इन्होंने पंडित नारायण व्यास के अलावा आर्य कुडी, श्रीनिवास अय्यर तथा और रामानुज अयंगर से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा था। सुब्बलक्ष्मी महान गायिका हैं और उनकी हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं।

आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बातों बातों में से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। और दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो हमने आपसे सवाल पूछा। हमारे पास अरहान अहमद का वजीराबाद से मैसेज आया है। ये लिख रहे हैं अमित कमल जी, आपके द्वारा पेश किया जा रहा प्रोग्राम घर आंगन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपकी जानकारी हमें बहुत कुछ बताती है, जो हमें नहीं मालूम होता वो भी हमें जानने का मौका मिलता है। धन्यवाद। और ये सब आपका प्यार है श्रोताओं, और हमारी जो पूरी टीम है इसी प्रयास में रहती है कि आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाई जाए। और ये जानकारी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी पूरी टीम इसमें मेहनत करती है, तो ये श्रेय उनको भी जाता है। और दोस्तों हम डीज ऑफ द डीज की बात कर चुके हैं, और अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। हर महिला के वार्डरोब में ऐसी कुछ साड़ियां जरूर होती हैं जिन्हें पहनने का कभी नंबर नहीं आता। सालों रखे रखे ये साड़ियां अलमारी के किसी कोने पड़ी रह जाती हैं। अब इन्हें फेंकने का मन तो नहीं करता दोस्तों, और ओल्ड फैशन होने की वजह से कोई पहनना भी पसंद नहीं करता। ऐसे में सवाल आता है कि क्या इनका क्या किया जाए। तो क्यों ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर आप एक काम की चीज तैयार कर सकती हैं। जी हाँ, अपनी पुरानी साड़ी से आप सुंदर सी बेडशीट बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए दो अलग अलग रंगों की साड़ियों को जोड़कर एक बेडशीट बनाई जा सकती है, या फिर कई साड़ियों को काटकर और आपस में जोड़कर पैच वर्क वाली कलरफुल बेडशीट भी बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ पुरानी साड़ियों से आप कुशन कवर भी बना सकते हैं। और इसे आपको कैसे तैयार करना है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। खासकर सिल्क की साड़ियों से आप कुशन कवर काफ़ी सुंदर लगते हैं, इन्हें आप फेस्टिवल पर यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा और क्रिएटिव करने के लिए आप इसमें लेस लगवा सकती हैं और सुंदर लुक इससे आएगा। इसके साथ ही आप पुरानी साड़ियों से अपना सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम भी बना सकती हैं। खासकर बनारसी साड़ियों और हैवी साड़ियों से डेकोरेटिव फ्रेम बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। बस उस हिस्से को अलग से काट लें और किसी फ्रेम में लगाकर रूम में डेकोरेट कर लें। ये क्रिएटिव हैक फेस्टिवल सीजन में काफ़ी काम आता है। और हल्के फैब्रिक वाली साड़ियों को दोस्तों आप पर्दे बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रंग बिरंगे पर्दे घर में एक अलग ही वाइब ऐड करते हैं। खासतौर से लाइट कलर्स और फ्लोरल प्रिंट्स काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखाकर आप इसमें लेस भी लगा सकती हैं, गोटा लगा सकती हैं, और पुरानी साड़ियों से आप खूबसूरत सा टेबल रनर भी बना सकती हैं। इसके लिए आप साड़ी का वो वाला हिस्सा चुनें जिस पर सुंदर प्रिंट वाली या बॉर्डर वाली साड़ियाँ हों। तो आप इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं, और पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप ना पुरानी साड़ियों को रखे रहेंगे तो वो

वो थोड़ा सा अगर पहनेंगे भी तो वो उतना लुक नहीं देती हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। हमारे पास एक और मैसेज आया है योगराज जी का, ये लिखते हैं, नमस्ते, मैं दिल्ली बुराड़ी से लिख रहा हूँ, अमृत विहार से, और ओजोन परत को बचाने के लिए आपने जो सवाल पूछा, मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखते हैं पेड़। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

मीना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम में। और स्टूडियो की जो घड़ी है हमें इशारा कर रही है आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है वही fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार। इसी के साथ अपने दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत अगली मुलाकात तक। नमस्कार।

घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में 3री बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मान

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हुए हैं और इस समय हम रोज आपको एक ही फिल्म से रूबरू करवाते हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई मुलाकात बहुत छोटी होती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है कि वो एक मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाता है। एक मुलाकात, एक नज़र और फिर शुरू होता है रिश्तों, यादों और इंतजार का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आज की हमारी मुलाकात है 1967 की एक ऐसी फिल्म से जिसके नाम में ही एक खूबसूरत एहसास छिपा है, छोटी सी मुलाकात। आइए शुरुआत करते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या खूब कहा है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई और प्यार बन के गले का हार बन गई। ये गीत फिल्म के शीर्षक को जैसे पूरी तरह जीवंत कर देता है। मोहब्बत की शुरुआत अक्सर किसी बड़ी घटना से नहीं होती, कभी एक छोटी सी मुलाकात ही दिल में ऐसी जगह बना लेती है जिसे फिर उम्र भर भुलाया नहीं जा सकता।

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे बंगाल के महान अभिनेता उत्तम कुमार और हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री वैजयंती माला। फिल्म का निर्देशन किया था आलू सरकार ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। आपको बता दें कि फिल्म मुख्य रूप से बंगाली कहानी पर आधारित थी, साथ ही 1954 की बंगाली फिल्म अग्निपरीक्षा का हिंदी रूपांतरण थी, जिसकी कहानी प्रसिद्ध लेखिका आशा पूर्णा देवी के उपन्यास पर आधारित थी। और दिलचस्प बात यह है कि बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार उत्तम कुमार ने इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सुनहरा दौर था और शंकर जयकिशन की खासियत यही थी कि वे प्रेम गीतों में भी अलग रंग भर देते थे। कहीं शरारत, कहीं रोमांस और कहीं विरह और कहीं मन की बेचैनी। और अब बात उस जोड़ी की जिसने फिल्म को खास बनाया। एक तरफ थी वैजयंती माला, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत, खूबसूरती और अभिनय दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री। दूसरी तरफ थे उत्तम कुमार, बंगाली सिनेमा के महानतम सितारों में से गिने जाने वाले कलाकार। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म के रोमांटिक पक्ष को एक अलग आकर्षण देती है। फिल्म में राजेंद्र नाथ, शशिकला, तरुण बोस जैसे कलाकार भी नजर आए।

फिल्म में गीतों में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर जैसे दिग्गज गायकों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिल्म के गीतों में बचपन की मासूमियत भी है और जीवन की उलझन भी, यानी एक ही फिल्म के संगीत में भावनाओं की पूरी दुनिया समाई हुई है।

इस फिल्म में गीतकार शैलेंद्र ने गीतों में ऐसी बेचैनी रखी कि गीत सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई प्रिया की राह देख रहा हो। शाम ढलती है, आंगन सूना लगता है और आंखें बार बार उसी राह को देखती हैं। यही तो प्रेम है। और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में वो गीत जिसमें प्रेम का आग्रह हमेशा कुछ अलग ही लगता है। आवाज में मिठास भी, मनुहार भी और सामने वाले को रोक लेने की एक मासूम कोशिश भी। 1967 की ये फिल्म शायद अपने समय में उतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसका संगीत आज भी लोगों के दिलों में है। शायद यही सिनेमा की खूबसूरती है कि कभी कोई अचानक मिल जाए, कुछ पल बातें हों और फिर रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात याद बनकर हमेशा साथ रहती है।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरां विच कटौती ते छोट की बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां च देश नूं पहला रखना चाहिदा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तों भूटान दे दो रोज़ा सरकारी दौरे ते होणगे। धरती ते जीवन की रक्षा विच ओजोन परत की अहमियत बारे जागरूकता पैदा करने लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों विच पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाने का फैसला किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों लिए जीरो मरचेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे अधीन आने वाले लैण देण और व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय

0: निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: The question should not only be,
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत

0: निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमीकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक

0: कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तजकर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
4: मीडियम वेव 1500

84 किलो हर्ट्स, 684 किलो हर्ट्स, FM 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा, भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें

0: आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना? श्रोताओ, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। Do you like going to the garden?
2: Yes, ma'am.
3: I like it.
1: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good, that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful, you have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
2: A jungle.
1: That's correct. And if so many grains of sand are together, as far as you can see, They will make a desert. Very nice. Let us recite a poem now. Would you like to recite with me?
2: Yes, ma'am.
1: This poem will tell us how small things make big things. Okay?
2: Okay, ma'am.
1: So, here comes the poem. Repeat after me.

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ. उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो. अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं

अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम

0: जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
2: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
2: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
2: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
2: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
2: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
2: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।

0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता,
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आंखों

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिले कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैनुल अक्वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। नीति आयोग ने 2025 के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारे का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने में दिल्ली की कारकर्दगी सबसे शानदार रही, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक होसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि होसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका बिल को मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा कि हुकूमत को टैक्स से मुतालिक पेश की जाने वाली तजावीज में टैक्स की शरह में कमी, छूट या रियायत हासिल करने से बढ़कर मुल्क के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वो आज

बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन के जेर एहतमाम नए दौर की टैक्सकारी के मौजू पर मुनाकिदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थीं। वजीर खजाना ने माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और थिंक टैंक से अपील की कि वो टैक्स पॉलिसी के बारे में आजादाना तहकीक को अवामी बहस का बाकायदा हिस्सा बनाए ताकि तहकीक का जायजा लिया जा सके, इस पर सवालात उठाए जा सकें और इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। अपनी वजारत की जानिब से बजट से पहले की जाने वाली मुशावरत का जिक्र करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुशावरती सरगर्मियों में ये बड़े सवालात भी उठाए जाने चाहिए कि विकसित भारत 2047 की जानिब बढ़ते हुए आइंदा दो दहाइयों के लिए भारत का टैक्स निजाम कैसा होना चाहिए। उन्होंने टैक्स से मुतालिक बेहतर तहकीक की जरूरत पर जोर दिया, जो तमाम पहलुओं का जायजा ले, इसके असरात की पैमाइश करे, मुख्तलिफ मफादात के दरमियान समझौते को तस्लीम करे और हर मुमकिन सरकारी आमदनी के नुकसान के बदले काबिले अमल मुतबादिल तजावीज पेश करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीक हुकूमत को मुख्तलिफ मुतबादिलों में से मुनासिब इंतखाब करने में मदद देगी, जिसके नतीजे में एक बेहतर टैक्स पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमीकोड इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस इश्तराक व तआवुन को फरोग देने, जिद्दत तराजी को रफ्तार फराहम करने, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने, सरमायाकारी को रागिब करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार महारत को फरोग देने की खातिर आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को यकजा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अख्वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा मुमालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 मुमालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमीकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरक तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और SEMI कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहिसे और कलीदी अहमियत के हामिल इजलास मुनाकिद होंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी समेत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निजाम के अहम शोबों और उभरते रुझानात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैनुल अक्वामी कंपनियों को शराकत दारी, सरमायाकारी के मौके और टेक्नोलॉजी के इश्तराक के इम्कान तलाश करने के लिए अहम मौका फराहम करेगा। इसके अलावा ये एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकत दार के तौर पर भारत की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को आज वजारत खारिजा में तलब किया गया और समंदर में पाकिस्तानी बहरिया की यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर सख्त एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में भारतीय बहरिया के एक यूनिट के साथ टकराव हुआ था। एक बयान में वजारत ने कहा है कि यह वाकया बैनुल अक्वामी आबी हदूद में पेश आया था, अगरचे इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह फौजी मशकों और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पेश की नोटिस से मुतालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान अप्रैल 1991 के समझौते के मुनाफी था। वजारत खारिजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर से यह कह दिया है कि मुतालिका पाकिस्तानी हुकाम को इस बात से मुत्तला करते कि सभी फौज यूनिटों को पूरी एहतियात बरतने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुतालिका समझौतों की दफात का एहतराम करने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया पेश न आए। उधर इस्लामाबाद में भारत के नाजिमुल उमूर को भी ये हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान की वजारत खारिजा को इसी तरह के एहतजाज से मुत्तला करें। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ आज से इस महीने की 18 तारीख तक रूस के सरकारी दौरे पर हैं। तीन रोजा दौरे के दौरान जनरल सेठ पेशे वाराना फौजी तआवुन और तरबियत समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर रूस की बर्री अफवाज के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल एंड्रे निकोयेविच के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें बाजाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वो मॉस्को में टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पर शहीद सिपाहियों को खिराजे अकीदत पेश करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے. نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا. اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا ہے. دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا

शामिल हैं। यह इस तरह का दूसरा इशारिया है। इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मकासद हासिल करने में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पेशरफ्त का तज्जिया किया जाता है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का मुअज्जमा के नजदीक एक हौसी ड्रोन को तबाह कर दिया है। यमन में जायज और कानूनी हुकूमत की हिमायत से मुतालिक इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने इस वाकये को मक्का मुअज्जमा पर हौसियों का दूसरा हमला बताया। इससे पहले 2017 में हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। उन्होंने मुतनब्बे किया कि सऊदी अरब की क्यादत में इत्तेहाद आइंदा हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हौसियों ने मक्का मुअज्जमा पर हमला करने से इनकार किया है। यह हमला सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच सामने आया है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ अपने आजाद तजारती समझौते पर अमल दरामद के लिए एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान महसूलात में खातिरखा कमी आ जाएगी और तजारत में फुसत पैदा होगी। इस बिल को 29 के मुकाबले 93 वोटों से मंजूरी दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तजारत के वजीर टॉड मैकले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरखा फायदा हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये आला क्वालिटी वाला तजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरखा कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड की मार्केट में रिसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया है। आज दुनिया भर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे कोराई अर्ज के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज में बैनुल अक्वामी तआवुन की हुसूलयाबियों को उजागर किया गया है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने उजागर किया कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ओजोन परत की हिफाजत करने का अमल घर से शुरू होता है। नेपाल के शिमाल मगरबी मुगू जिले में आज सुबह सवेरे 3 घंटे के अंदर ही 2 बार जलजले आए। किसी तरह के जानो माल के नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। जलजले से मुतालिक निगरानी और तहकीक के नेपाल के सेंटर के मुताबिक पहले 4.5 शिद्दत का और फिर 4.2 शिद्दत का जलजला आया। इन दोनों के मरकज मुगू जिले में कलाई के अतराफ थे। ये जलजले ऐसे वक्त आए हैं जब नेपाल 26 अगस्त के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के असरात से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। भोटेकोशी के इस सैलाब में कम से कम 1403 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 4089 अफराद अब भी लापता हैं। मुतासरा इलाकों में तलाश, शिनाख्त और राहत की कार्रवाई जारी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैनुल अक्वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। नीति आयोग ने 2025 के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारे का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने में दिल्ली की कारकर्दगी सबसे शानदार रही और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शहरनामा प्रोग्राम के तहत सुनिए आगरा के हवाले से ये मालूमाती प्रोग्राम।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम शहरनामा।

लगता है कि सुल्तान सिंह कदर लोदी ने जब इस जगह पर हमला किया तो रास्ते में सुल्तान के किसी सिपाही ने वहां के मकीन से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो वो ये समझा कि सिपाही पूछ रहा है कि आगे क्या है, तो उसने घबराहट और खौफ से कह दिया कि आगे राहस्त। सिपाही ने समझा कि शहर का नाम आगे राह है, जो धीरे धीरे आगरा हो गया। कुछ अरसा बाद सुल्तान सिकंदर लोदी दिल्ली वापस लौट गया और वहीं 1517 में उसका इंतकाल हो गया। इस तरह अभी तक आगरा की जानिब किसी भी कोई खास तवज्जो न रही और एक छोटे से इलाके के शक में ये शहर मथुरा की पनाह में सांस लेता रहा। लेकिन 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल हुक्मरान बाबर की जंग पानीपत से न सिर्फ शिमाली हिंदुस्तान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नई सियासी, सामाजिक, माशरती, सकाफती, तहजीबी और तारीखी दौर का आगाज होता है और मुगल रियासत की आमद के साथ ही नए हिंदुस्तान का वजूद होता है और आगरा शहर पर मुगल हुक्मरानों की खास तवज्जो रही। अब तक सियासत और हुकूमत का अहम मरकज दिल्ली था, जहां सल्तनत हुक्मरानों ने अपना पाया तख्त रखा था, लेकिन मुगल बादशाह का पाया तख्त अब आगरा बन गया, जहां बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहां तक कि औरंगजेब जैसे अजीमुशान शहनशाहों की ताजपोशी आगरा के किले में ही हुई है। अब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी सयाह, ताजिर और आलिमीन दीन आगरा आने लगे। बाबर बादशाह की जिंदगी कम थी, वैसे भी उसका ज्यादातर वक्त जंग करने और मुल्क फतह करने में लग गया। इसके बावजूद बाबर बादशाह ने आगरा में ईरानी अंदाज के चार बाग तर्ज की तामीर की, जिसमें इमारत के चारों अतराफ बागात लगाए, जिसके मिसाल आज भी आगरा में आराम बाग के नाम से मौजूद है, जिसको कुछ लोग गलती से राम बाग भी कहते हैं। आगरा चूंकि अब मुगल बादशाहों का पाए तख्त बन चुका था, इस वजह से बड़ी तेजी के साथ यहाँ इकतसादी, तहजीबी, सियासी और माशरती तरक्की होने लगी। अब तक यहाँ ब्रिज भाषा बोली जाने का चलन था और सनातन धर्म का गलबा था, लेकिन मुगल हुकूमत के आ जाने से फारसी जबान व अदब की तरफ तवज्जो आम होने लगी। बाबर के बाद हुमायूं का जमाना भी अफरा तफरी का रहा, उसका कयाम आगरा के बजाय दिल्ली में हो गया। फिर भी हुमायूं के अहद की बनाई हुई एक मस्जिद जमुना नदी के पार मेहताब बाग के पास कछवाहा गांव में आज भी मौजूद है, जिसके सदर दरवाजे पर अहद हुमायूं में बनाए जाने की तारीख 1537 ईस्वी कंदा है। हुमायूं ने आगरा के किले का थोड़ा सा हिस्सा जरूर तामीर करवाया, मगर जल्दी उसके दिल्ली मुंतकिल हो जाने से आगरा में कोई खास तामीरी काम न हो सका। हुमायूं के बाद जब तीसरे मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर आया, तो सन 1556 से 1605 ईस्वी तक तकरीबन 50 साल की मुद्दत में आगरा और उसके आसपास फतेहपुर सीकरी के इलाके को इम्तियाजी मर्तबा हासिल रहा और पूरे हिंदुस्तान में आगरा को बेशते बनी बना दिया गया। तहजीबी और माशरती एतबार से पूरी दुनिया के ताजरीन की निगाहें यहाँ कायम थी। बड़े बड़े सयाह और मजहबी मुफक्किरीन अकबर के दरबार के मेहमान बनते थे। फतेहपुर सीकरी में तो इबादत खाना जैसी जगह पर हर धर्म और हर ख्याल के उलमा जमा होते थे और दीन इलाही जैसे अकीदे की बुनियाद भी यहीं पड़ी थी। अकबर के नौरतन जिनमें अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दोप्याजा और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे काबिल आलिम और लायक फायक मौरखीन व आलिमीन फन भी इसी आगरा व फतेहपुर सीकरी की जमीन का हिस्सा थे। कहा जाता है कि अकबर आजम के अहद में इस जगह को जिस कदर अहमियत और अजमत मिली है, वो न तो इससे पहले कभी मिली है और न बाद में ये मर्तबा हासिल हुआ है। अकबर ही के अहद में आगरा से मुंसलिक फतेहपुर सीकरी में पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती के दौओं से अकबर को न सिर्फ औलाद मिली बल्कि उसकी पूरी हुकूमत पर ख्वाजा सलीम चिश्ती का दस्त शफकत कायम रहा। आज भी ख्वाजा सलीम चिश्ती की मजार पर जाकर जो आसूदगी का एहसास होता है, उससे दिल झूम झूम जाता है और अकीदत से सर तस्लीम खम करके यही जी चाहता है कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के जिक्र से दिल को मसरूर करें।

और हमेशा के लिए शाहजहां का अहद फन तामीर का सुनहरी दौर कहलाया। आज भी जब मुगलों का जिक्र होता है तो लोग बड़ी शान से कहते हैं कि अहद मुगलिया में दो चीजें नवादरात के तौर पर हिंदुस्तान को मैसर हुई हैं, एक ताजमहल और दूसरा मिर्जा गालिब। बेशक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना ताजमहल है और उर्दू अदब व शायरी का शाहकार मिर्जा गालिब है और ये दोनों ही आगरा के मरहून मिल्लत हैं। ताजमहल की तामीर सन 1631 से 1648 के दौरान कमोबेश 17 साल में हुई और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश भी आगरा में 1797 में हुई थी। मीर तकी मीर, मीर हसन, चंद्रभान ब्रह्मन, नजीर अकबर आबादी वगैरह जैसे जलीलुल कद्र शोहरा ने आगरा की सरजमीन से अपने फन की आवाज बुलंद की और सारी दुनिया में और अदब व उर्दू शायरी में उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। शाहजहां के अहद में अभी तक अगरचि फारसी जबान का गलबा था और दरबारी जबान फारसी ही थी, लेकिन आगरा के बाजारों और आवाम में उर्दू भी बोली और समझी जाती थी। एक लतीफा ही सही, मगर ये सच है कि शाहजहां बादशाह सलामत भी उर्दू समझते थे और वो यूं कि एक उनके अहद में एक सिपाही था जो उर्दू में शायरी भी करता था, जिसका नाम था चंद्रभान ब्रह्मन। उसका तबादला आगरा के बजाय कहीं दूर बेकैफ सी जगह पर कर दिया गया। दोबारा आगरा वापस आना चाहता था तो उसने एक लतीफा यानी किता उर्दू में लिखकर किसी तरह बादशाह सलामत के हुजूर में पेश कर दिया। वो किता कुछ इस तरह था, खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न साकी है न सहबा है, न शीशा है न प्याला है, और ब्रह्मन वास्ते अशनांज के फिरता है बगिया सूं, न गंगा है न जमुना है, न नदी है न नाला है। इन अशार से अंदाजा होता है कि शाहजहां के जमाने में उर्दू जबान नो अदब का मिजाज कैसा था। बादशाह सलामत को उसकी दरख्वास्त पसंद आई और ब्रह्मन को दोबारा आगरा शहर में जमुना नदी में स्नान करने के लिए वापस बुला लिया गया। शाहजहां का नाम लेते ही फौरन मुगलिया हुकूमत का शाहकार ताजमहल का नाम फौरन जहन नशीन हो जाता है। वैसे तो ये एक मकबरा है जो शाहजहां की बीवी मलिका अर्जुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज महल के इंतकाल के बाद उसके जसद खाकी को बुरहानपुर से मुंतकिल करके यहाँ ले आया गया था और फिर धीरे धीरे ताजमहल की तामीर होने लगी। यहाँ तक कि 17 साल की मुद्दत में ये मुकम्मल हो गया, जहाँ सुर्ख और सफेद संगे मरमर से इसे सजाया और संवारा गया है, जहाँ कीमती पत्थरों से उसकी नक्काशी और मीनाकारी की गई है, जहाँ बहते हुए झरनों और फव्वारों को देखा जा सकता है। मकबरे के अतराफ बागात का हुस्न काबिले दीद है और जमुना नदी के दामन में पूरी इमारत खामोश खड़ी हुई है। ताज के दरो दीवार पर कसरत से पुरानी आयात कंदा हैं, इनको हिंदुस्तान, ईरान, इराक और कश्मीर के हुनरमंद कारीगरों ने तैयार किया है और इसी मकबरे के नीचे बेगम मुमताज महल के साथ खुद शाहजहां बादशाह की मजार भी है, जो सन 1666 में उनके इंतकाल के बाद बनाई गई। आगरा के किले में दीवान खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और बाज दूसरी सफेद संगे मरमर की तामीरात हुई, लेकिन ताजमहल की इनफरादियत और अजमत का कोई सानी नहीं। बादशाह सलामत किसी जगह भी पूरे मुल्क में ये मकबरा बनवा सकते थे। वो चाहते तो कश्मीर, कराची, लाहौर को उसके लिए चुन सकते थे, मगर आगरा के सरजमीन पर दरियाए जमुना के किनारे उसका इंतखाब किया। शायद ये जमुना नदी का तकद्दुस था जिसने उसी जगह पर ताजमहल की तामीर करवाई। ताज सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक ऐसा शाहकार है जिसको कायनात सलाम करती है और जिसके दीदार के लिए दुनिया भर से लोग लाखों की तादाद में देखने हर रोज आते हैं। ये सिर्फ एक बादशाह की मोहब्बत की निशानी ही नहीं है, उसमें वलियों, बुजुर्गों, साधु संतों और करोड़ों मोहब्बत करने वालों की दुआएं शामिल हैं। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ताजमहल का हुस्न निखरता जा रहा है और खामोश जबान में जैसे ये कह रहा हो कि मुझको तारीख के किस्सों में न ढूंढो लोगों, मैं हकीकत हूँ, मुझे आँख से देखा जाए।

शहरनामा प्रोग्राम के तहत आपने आगरा के हवाले से ये मालूमाती प्रोग्राम सुना। तहरीर डॉक्टर अतीकुर रहमान सिद्दीकी की थी और रावी थे इफ्तखरुज़्ज़मा, पेशकश इफ्तखरुज़्ज़मा की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा है बड़ा दिन फिल्म से।

दिलजीत सिंह की आवाज में ये नगमा था तुम बिन फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था सजन फिल्म से। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और अमित कुमार को सुनिए फिल्म है जीवा।

आशा भोसले और अमित कुमार के गाए हुए इस गीत के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जाम बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा कि हुकूमत को टैक्स से मुतालिक पेश की जाने वाली तजावीज में टैक्स की शरह में कमी, छूट या रियायत हासिल करने से बढ़कर मुल्क के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वो आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन के जेर एहतमाम नए दौर की टैक्सकारी के मौजू पर मुनक़िदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थीं। वजीर खजाना ने माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और थिंक टैंक से अपील की कि वो टैक्स पॉलिसी के बारे में आजादाना तहकीक को अवामी बहस का बाकायदा हिस्सा बनाएं, ताकि तहकीक का जायजा लिया जा सके, इस पर सवालात उठाए जा सकें और इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। अपनी वजारत की जानिब से बजट से पहले की जाने वाली मुशावरत का जिक्र करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुशावरती सरगर्मियों में ये बड़े सवालात भी उठाए जाने चाहिए कि विकसित भारत 2047 की जानिब बढ़ते हुए आइंदा दो दहाइयों के लिए भारत का टैक्स निजाम कैसा होना चाहिए। उन्होंने टैक्स से मुतालिक बेहतर तहकीक की जरूरत पर जोर दिया, जो तमाम पहलुओं का जायजा ले, उसके असरात की पैमाइश करे, मुख्तलिफ मफादात के दरमियान समझौते को तस्लीम करे और हर मुमकिन सरकारी आमदनी के नुकसान के बदले काबिल अमल मुतबादिल तजवीज पेश करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीक हुकूमत को मुख्तलिफ तबादलों में से मुनासिब इंतखाब करने में मदद देगी, जिसके नतीजे में एक बेहतर टैक्स पॉलिसी तश्कील दी जा सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवीं सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस इश्तराक और तआवुन को फरोग देने, जिद्दत तराजी को रफ्तार फराहम करने, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार महारत को फरोग देने की खातिर आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को यकजा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अल-अक़वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत

0: चमक के साथ बारिश हो सकती है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 160 रन का जीत का निशाना 14 ओवर्स और 5 गेंदों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर धुआंधार 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच कल दिल्ली में इसी मैदान पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका बिल को मंजूरी दे दी है। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: अभी आप उर्दू सर्विस की नशरियात आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। السلام علیکم میڈیم ویب ترک گیان انگیش بی نیش بی کل ہرٹس میڈیم ویب تونچک نغب گیان انگیش بی نیش بی کل ہرٹس اب ہم مرگی اشیر ایچک میں گھرٹس دونا موبیل ایپ نیوز اون ایرکا دیو آکاش وانی کرگلین دیرین پرو چپت بی پروگرام ان کھرے گا بلا وزر نفر پان یا انتی خدمت لہ لپ سوت پروگرام یا انکھان سا خدمت لہ ناچی جون اسلام پو فرم چند سون شک دیرین جاک پو بودو سپٹمبر الزیچوز رک وقت پو پیتو ویتو سوت غانا مرچک سون سک کستا پروگرامی گوزک پیگا پرچوکے دوایا پروگرام صداقت دی پروگرامی رخصہ کنگان مزد فرسامہ قرآن تلاوتنا ترجمہ

بلکہ جہنمی میں خل بیت پشتیانہ پارا پارا چھ حساب چھ نیوں چز ان

सबसे पहला ना अस ऑल इंडिया रेडियो करगिल टीम शुक्रिया जरे गायन सरचिंग दिखा मौका तो मिला व दिनिंग यंती तुनुक एक खाकचन उत्पेद पी टॉपिक चुहरे यहाँ सरचिक गा मोहम्मद कासिम यंती खदमत यान यों सचू दिनिंग टॉपिक पु ऑनलाइन प्राइवेसी ना साइबर सिक्योरिटी बेसी की का नी सबसे पहला यंता और दयामा उम्मीद की दिनिंग यदि टॉपिक पु यंता यान खान कुनलार दिमो सरतुक निगातेस दिरिंग दी टॉपिक पे बारे अनुक जरना ऑनलाइन प्राइवेसी ने साइबर सिक्योरिटी बारे अनुक सबसे पहला ना अगर गतेस गति नॉर्मल जान डे पुन अनुलता ना नॉर्मल गति दिन कुन अनुलता ना मतंग लंग से तम मोतुगा गतेस गति फोन कुन यूज बेत व्हाट्सएप कुन इंस्टाग्राम कुन या गतेस गूगल कुन का कुछ चीज कुन सर्च बेतंग जैसे कि वीडियोस कुन गतेस तेर यूट्यूब का दोमेन मा ऑनलाइन गतेस पेमेंट्स कुन बेत ऑनलाइन गतेस शॉपिंग बेत दोन गाँव मा या क्लास कुन अटेंड बेत नी दी एक्टिविटीज कुन गाँव मा इंटरनेट का इन्वॉल्व यो जरे गतन सार तक्स पायोत नी जब गतेस दी इंटरनेट पु यूज बाना गतेस इंफॉर्मेशन कुन शेयर बचा जिन कभी गतेस इंफॉर्मेशन कुन शेयर बचा जिन उदो तक्स पायोते कभी गतन मा तक्स पा मेत पांगतेस दचो इंफॉर्मेशन कुन शेयर बेन छेत नी दी क्वेश्चन पु गतंगा उदे कना जाओ एराइज छेत कि पर्सनल इंफॉर्मेशन गचो सेफ लुशिन जरे जरे अगर नते सिंपल तरीके अनुष्ठाना सबसे पहला ऑनलाइन प्राइवेसी पुखरा चीन सुजरे ऑनलाइन प्राइवेसी ज्ञान खान कुन यंता जरना दोल जस्टिन गाव अनुक नता कंट्रोल जगतंग नतेस नति पर्सनल इंफॉर्मेशन या नता अंडरस्टैंड होता नता छुत होता कि नतेस गा चीज कुन गाता शेयर पर क्वेश्चन इन समिक लिमिट उदोन गा चौ यूज बचान इन दोन गाँव में बारे अनुक जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन बारे गतस्ताना ध्यान रुक गति मिंग कुन योजिन फ़ोन नंबर या फोटोग्राफ कुन गतस्ता लोकेशन कुन ईमेल एड्रेस जरे या पासवर्ड कुन गतस दो मिन मा स्कूल कुनिका या कॉलेज इन्फॉर्मेशन कुन गतस्ता दे फाइनेंशियल डिटेल कुन दून गाँव मांग अति सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुन अगर गतस एग्जाम्पल तौरी कस्ताना एक गतस प्रोडक्ट चिक ऑनलाइन गतस न्योचा सिना उदाहरण गतस गति मिंग पुना फोन नंबर पु दोनों एड्रेस पु तांचा जिन गाँव गति तंग में फिला जरूरी सोंग उदय डिलीवरी उल्ले भी फिला नी देना न चुका एक अननाउन वेबसाइट चिक गतस सपोज बना अगर गतस संबंध खो ना एक अननाउन वेबसाइट चिक गाँव ही कहाँ आता पासवर्ड कुन या बैंक पिन कुन ओ टी पी कुन तो जरे जरे दूसरी बात जिन्नी से बना आता एक सदमा सोचिन मतलब जैसे कि गातस दे प्लेटफॉर्म पे कैसों से चाँ पता मैं पी वेबसाइट थी कैसों से उदन ताना नी गातस सिंपल रूल चिक ये तो जख पर पी गाता सगर खर्चा नहीं होता दो चीज बना कि तमाम उदय इंफॉर्मेशन कुन गाँव गाती कना ले नेता उदन डिजॉर्व बचे मिल जरे जरे जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बारे अनु गातस यहाँ सर चिक ज्ञान खान कुन यंते खदमत लजर ना साइबर सिक्योरिटी मीन्स चीन नि जबाना साइबर सिक्योरिटी मतलब पुखरंग मति डिवाइस को निकाना या अकाउंट कुन नेटवर्क दोनों इन्फॉर्मेशन कुन गातेस प्रोटेक्ट बसे जक्चस्पो गातेस स्कैम मचा चुकपा दोनों ऑनलाइन थ्रेट को निकाना अगर गातेस उदाहरणों का आम एग्जांपल का तुलताना जैसे कि गाता मैसेज यूँ है कि गाता यूँ मचेद दे दरें गाता सोसाइटी अनु थोंगत कसम कसम मैसेज उन जैसे कि यंता मैसेज यों कि 50,000 यरंग और ग्याल इंसु जरे जरे निधि लिंक पिका यारे जल्दी क्लिक का तो बना ओदे का नन का तो नन ना यरंग 50,000 थोपचिन जरे जरे कभी कभी आता ची छेदनी से बना मन अपने 50,000 ओंचिन तो से बना एक्साइटेड सों से ओदे लिंक पिके क्लिक बेतां ओदे वेबसाइट पुस गते जब क्लिक बना खोएस गति फोन नंबर पु तो जरे दे अलावा पासवर्ड पुंची दुख ओटीपी ची दुख जरे दुन गामा आती कनर सोते खेरेत गाँव की वजह से कची छेदनी से बना आती कना स्कैम छत नती पहने कुन लूट बसे खत्म बसता है खोज नती इंफॉर्मेशन कुन खेरे उदे चीज कुन गाँव में आती युद्ध खाने पहने कुन गाँव में खत्म बसता है निधुन ची निज बना दुनी का नातांग बचाई बसे लुशा है उदो ने अनुना सबसे मैं जैसी चीज छेदनी से बना जैसे कि पासवर्ड कुन स्ट्रॉन्ग जगचस्पो नाते साइबर सिक्योरिटी अनु सख्त खाचन उदय इजिएस्ट वे पो एक आसानी तरीका चिक नतस नति साइबर सिक्योरिटी अनुक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना यूनिक पासवर्ड कुन जैसे कि गाती मोबाइल फोन को निशाना या गाती इंस्टाग्राम गतिस दर सोशल मीडिया यूज बेत बाकी व्हाट्सएप का इच्छाना दोन गाँव में यूज बेता उदो ने फिलहाल चीज छदनी से बना आमतौर पर मी खची गति सोसाइटी अनुता थो

एक कंप्यू दो आता रिक्योर में थी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह, लेकिन जो आता सी बार उसे बना स्मॉल हैबिट्स का तो गावी वजह से कहाँ आती जिंदगी ने छो छो डिफरेंस का तो आता आयो मत हुआ है। सबसे पहला चीज बचाव आती फोन कौन कंप्यूटर कौन एप्स कौन अपडेट बचाओ जरे जरे या स्क्रीन लॉक जैसे कि आती पिन कौन पासवर्ड कौन दोन चीज बचा जबाना संगत बायोमेट्रिक जा।

tangatas biometrics jakcha ya strong jakcha zare zare tangatas na ja strong password jakcha important accounts kun fila domain mangatas otp kun ya password kun pin kun sune ambo share me bacha zare zare yang atas yang spera chiltana gachi shika da chwe click me bacha ya file kun download me bacha zare zare ya gachi shik agar permission through जैसे कि सिंपल जैसे आता कॉन्टेक्स या माइक्रोफोन दोन गांव में आता दसो एलाओ में बच्चा चाह जानकारी मेत पा दून गांव मासो यंती दोनों एक चन खाक चन स्पेरा का तो नियंग आतो आते स्थाना नाते फोन कुन लर तक्ष पा उत की आते संभव आतां ज्यादा संभव आम आतां ज्यादा नाते फोन कुन लर तक्ष पा जरे जरे अगर आते एग्जाम्पल तो रेखा यंता यंता स्पेरा रेख जरना की आते पेयर ऑफ शूज ऑनलाइन आते सम सर्च बेत जैसे कि आतेस जेर बिस्परा उ आतेस बूट ची खोजिन अगर बूट पो अगर आतेस शेयर कतु ऑनलाइन आतेस कतु स्थाना देर यब ना आता बूट एडवर्टाइज ऑन छेन दो मिंदु द्या घरा इंदे दू चीन ने जबना सोशल मीडिया सोरे फोन पोस्ट नति माइंड पो रीडिंग बेनो जरे जरे निंग आतेस यूजफुल हैबिट्स कतु आतेस अपनाई बाय रोशिन ची बा जनी जबना प्राइवेसी सेटिंग्स कुन हमेशा चेक बेंदुक चा परमिशंस कुन इंटरेस्टिंग फैक्ट कतु यंती दुनुक जरना गाची शिक जैसे कि ची शिक्षेन उतना या तमाम लिसनर कुनला हमेशा जो ख्याल जोशी यहाँ तक यान खान कुनेस ची बचा जबना तम बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स कुन गाउन गाता छे टंग उदय गता नाता पैनिक में छचा या जल्दबाजी में बचा या अगर गाता मैसेज का तुम होता उदून अनु जल्दबाजी में बचा ठीक बसे जानकारी लेने में कोशिश बचा दोन गाँव में आती फिलहाल एक चीज़ का तुम गाँव गाता ख्याल रख पर भी कोशिश बार कोशिशिन ताकि गाता उदय ऑनलाइन फ्रॉड को निकालना शिकार मिशा चिस्पे फिला दयानु कहते फैक्ट का तो जरना जैसे कि नति उदय पासवर्ड पो एक सीक्रेट डायरी चौकशीन सीक्रेट डायरी चौकशी से बना आती नेम्स कौन बार्ड डेस्क कौन आज पहला जज दे दो चौक चीज़ का तो मजाक पबल की चीज़ आप कोशिश बचाने से बना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का तो ताकि उदू आता सो पता मिशा चुपे फिला नी आतस क्विक आखिरी क्विक जैसे कि क्विक लिसनर क्विशिक जैसे कि यंता यान खान कुन लटिया ना अगर आतस चिकचिकी जरा फोन बस कि यहाँ ओ टी पी तो जरे जरे बिंग यानु नहीं जरे आतस तांचा जिना बिल्कुल तांचा मेन या यहाँ मैसेज होंस कि यहाँ इनाम चिथोपसुक यारे क्लिक बोस ओ टी पी कुन शेयर बोस जरना आतस तांचा जिना दुआ तांचा मेन अगर गति पासवर्ड कुन जाना न चौगा पासवर्ड पर सेम डिफरेंट अकाउंट्स का तुए अलग अलग का तुयत ना उदू एक ग्याला आइडिया की ना मेन जरना तो मन ग्याला आइडिया किन आतस आमतौर पर अलग अलग अकाउंट्स को नहीं अलग अलग पासवर्ड जग चस्प गति फिला फायदा सिन नी जब भी आता जैसे यंती खदमत अनुगजर तंग जब भी आता सस्पिशियस मैसेज करते हो ना सबसे पहला आतस ची बोझनी से बना रहा ठीक बस वक़्त तुम कि नारज उदो मेरी फिलहाल ठीक दो है मतलब दियो फ्राड चिका तो मैंने सुबह ठीक बस संभा था जा दसू का क्लिक में बचा मना जल्दबाजी अनु गाची शीख आतस ऑनलाइन दरे जमाना इन आतस गाची शीख दसू क्लिक बेंच हमेशा चाह हमेशा जल्दी रिप्लाई में ताँचा या गाची चिकन ना पेमेंट चिका तो बेन उतना पेमेंट पर जल्दबाजी भी कोशिश में बचा आसानी नहीं हम बचा टाइम लें चा जून गाँव मांग आता यंतंग यन खान कुन लजर बहुत भी चीज़ का तो इन यंग लिसनर कुन यंता का तो जर ना दी इंटरनेट पर एक वंडरफुल टूल चिकन गाउस आता मदद बेत कम्युनिकेट बेफिला एक दूसरा नहीं हम चीज़ कुन सब बेफिला या लस कुन बेफिला या शॉपिंग बेफिला सब हम आता कनेक्ट होते लेकिन अगर आतस जो इंटरनेट पर दिया चौकशीन दे जैसे आतस ना ना कुलिक ताँता दरे ना कुलिक पो आतस हमेशा स्ट्रॉन्ग जग पर मतलब कुलिक ता माना ना पो महफूस हो सदे दिया चौका दरे आती मोबाइल पो आतस उदो चौकशी बाहर घोशीन कि ना कुलिक पो हमेशा स्ट्रॉन्ग जग पर आतस पासवर्ड पो हमेशा दो चौक पासवर्ड का तो यकचा गाँव मिल ला गैस बैंक इन में तंग ताकि आती इंफॉर्मेशन कुन बचाई सो सोल्यूशन नींग आतेस उदयानु कुछ चीज़ आता खाकचान जून इतु जग पर उत्पी चिपा जनी जबाना हमेशा क्लिक बाबा चांस ना आतेस संभा तांचा शेयर बाबा चां पहला आतेस चेक बचा आते प्रोटेक्ट कुन पासवर्ड कुन आतेस प्रोटेक्ट बस जगचा डिवाइस कुन ला अपडेट तांचा नी आखिरी का गा सहता देना जरूरत की दी दिन दी प्रोग्राम पंगन में फिलहाल शुक्रिया हमेशा दी चीज़ को निकाना इन्फॉर्म लुशिक कि आतस ठीक बस है ज्ञान इन दुखशिक अवेयर दुखशिक कि दी चीज़ को नंबर का चौक हैंडल बचिन जरे जरे अगर आता चौक
کال کتے ہونا گا چوکا گاتے جن نمبر ہینڈل بچن گاتی سوشل میڈیا گاتے گا چوکا یوز بچن پر

थोड़ा सा ही पंजाब की समृद्ध हॉकी विरासत और इस खेल में इसके योगदान को भी पंजाब के दिग्गज खिलाड़ियों की विरासत को मनाने और भारत के प्रमुख हॉकी केंद्रों में से एक के

0: कदम है और हॉकी के प्रति उनके समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए हम पंजाब सरकार और हॉकी की समृद्धि संस्कृति वाले मोहाली और जालंधर एशिया की शीर्ष टीमों के लिए प्रेरणादायक मंच प्रदान करने का मौका है। सुनाओ आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
1: और मुझे आकाश को
0: दीजिए इजाजत।
2: दुरेंद्र शर्मा चुनाव प्रोग्राम यानी में पिंग मीडियम में दोनों एफएम के थ्रू आकाशवाणी करके लेंगे वक्त पर तो सत्रुक चिन्ह के साथ आकाशवाणी दिल्ली के ना खबरों रिले बेत रिले लाडर बसे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्म्यो डी एन थुंगियल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi today. He said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
1: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा जो कि 15 टू 25 वाले बैंड में थे. दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर.
3: द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एग्जेम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. The government has declared Pakistan-based Shahzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youth and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. The ministry said the decision was taken in keeping with Prime Minister Narendra Modi's vision of adopting a zero-tolerance approach towards terrorism. India has expressed deep concern at the drone attack near Makkah in Saudi Arabia. Responding to media queries regarding the drone attack, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the incident near Makkah is particularly concerning given the special significance of the city to Muslims across the world. The spokesperson further said India expresses hope for the early restoration of peace and stability in the region. The External Affairs Ministry today summoned the charge d'affaires of the High Commission of Pakistan in New Delhi and launched a strong protest over the unacceptable conduct of Pakistani naval units at sea, which led to a collision with a unit of the Indian Navy. In a statement, the ministry said while the incident which took place in international waters did not cause any major damage, the conduct was in direct contravention of the agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troop movements of April 1991. A special court of the National Investigation Agency at Jagdalpur in Chhattisgarh today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhiram Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. The attack took place on the 25th of May 2013 in Jhiram Valley in Bastar district, killing 27 people, including several senior Congress leaders, and injuring 35 others. Veteran actor Anant Nag will be presented with the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2024 for his contribution to Indian cinema and an illustrious cinematic journey that has inspired generations. The Ministry of Information and Broadcasting announced this today. The award will be presented at the 72nd National Film Award Ceremony on the 22nd of this month in Kevadia,

0: मीडियम वेव दोनों एफएम के जो आकाशवाणी
1: स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी
0: एजाज अली कना क्लाइमेट चेंज
1: राजनीतिक स्वतंत्रता तभी
2: सामाजिक क्लाइमेट चेंज दी क्राइसिस तब्दीली ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बाढ़ी मतलब वार्मिंग क्लाइमेट चेंज नमजे तब्दीली चीज खची होता जैसे कि टेम्परेचर जरिता दो लंगाते सदिया गर्म जरिता छरपाई ऊंचा स्पो देखा ऊंचा स्पो दी लंगाते प्रेसिपिटेशन जरिता या दो लंगाती दी दियानो आबे हवानो की मौसम जबनाती दी नमजे खोरी दियानो वक्त ची लंबा वक्त ची फिलहाल चेंज ऊंचा स्पो तब्दीली ऊंचा स्पो क्लाइमेट चेंज जरिता का संग जनता मतलब दी नातेस दे दरे नाती क्लाइमेट नातेस वेदर जरिता शक जगह जैसे कि दुंगातीस नातेस मौसम जरिता उर्दू पानी संग नातेस नमजा जरिता इसकाला तंगा संगता दी दिन इसके अनुसार शिक तक जियो तंग ते वेदर चीज अच्छी ना दुना क्लाइमेट चीज अच्छा सिंह जरे दरे वेदर अच्छा सिंह नाती दरे मौत हुआ चमचिक छत दो ग्रांग दो या नाती घर अब हम घर खोर नानुक चमचिक नमी दुख जरे छू दुख या नाती दिया नुक चमचिक छरपाई हों दुख या ग्रांग हों दुख चमचिक स्प्रिंग दुख जरे दुख वेदर वो नाती घंटा बारी मौत हुआ सुबह शाम वेदर जरेता वेदर लो खची फिला जम सना जैसे कि 10 साल 5 साल 20 साल 100 साल फिला दो लंगाते दे जगह क्लाइमेट जरेता दिन इसके फर्क को दिया जो कसा तना दी तब्दीली होती गति दी गति दी मौसम पहनो गति दी नमजन तब्दीली की वजह से कहीं ऊंचा सिंह जाना ध्यान हो चीज नहीं सी वजह से कहीं होता जो चिपुंगाता नेचुरल प्रोसेस जरेता कुदरती तौर पर जैसे कि चिपुंग नहीं सिरे सिंह आता होता माता इंसान इस बस भी चीजात को नहीं वजह से कह दे माते ह्यूमन एक्टिविटीज रहता जो माते लस माते इस बखाने चीज होने वजह से कर तना माता आदि नेचुरल प्रोसेस यानी दी कुदरत है छह चीज की वजह से ध्यान हो माता चंग आती लगा कंट्रोल चिंग में तंग माता चंग ध्यान हो तब्दीली बदल वजह सिंह चास में तंग क्योंकि दो कुदरती ना जैसे कि दो ध्यान हो चीची हो चीज जरूर जो फॉरेस्ट फायर रहता जो जंगल सकार दो स्पेस की गर्म सो से मैं दुख स्पमेंद होगा दी चीज सुन ला रहता फॉरेस्ट फायर जैसे कि गर्म छल प्रोसेस जो दियंगाचासन वजह से नमजे तब्दीली क्लाइमेट चेंज चीज नहीं सी वजह से कति वजह से ह्यूमन जी लस को वजह से कहते लस का तो बना दिया गैस का तो बीता जो दी गैस उनला ग्रीन हाउस गैसेज रहता गैस उनला ग्रीन हाउस सोलर तबेता जो नमजन ग्रहणों की वजह से कहते प्लास्टिक ताव से एक कॉम्पैक्ट हाउस मतलब नंग चिक पूरा सोलर पैक जो से ध्यान लूं मिशा चबा से ध्यान सब्जी ताव माना तो सब्जी से जो क्योंकि दे सात पिंगमास दी नती निम्न करने उस पे दे सात पूर्व दे प्लास्टिक पूर्व से ध्यान लूं हीट पूर्व ध्यान लूं दे सात पूर्व जख से कोई पिंग समाह जो पता लूं मौज पाना दो दोनों उस पे वजह से कहता ना ध्यान सात पूर्व बना तो सब्जी सब के लाता का सता ना दी गैस उनला ग्रीन हाउस चार्ज रेंज बना दे सोलर पूर्व क्योंकि दरे नती दी गैस उन नती दी घर को ना युद्ध पे वजह से कहता ना तो निमान नी तो हम से छाद यों लगा तो नती जिससे दी निमे का ना तो ना दी सब दुनिया लोग सा छा छा से ना नाम है लोग से का फोक सा ना तो ना दी लोग से छे छा मंगें चुपा दी गैस उन इस बसे दिया लोग उस गख से जख से ना जो दिस गख से वजह से जख पे वजह से का आते दी घर को गरम लुशा से ना जो दी गरम लुशा से ब्लांट इस ग्लोबल वार्मिंग से रहता हमारे ना दी घर को दिगा दी ग्लोबल वार्मिंग छचा से वजह से का आते ग्लेशियर से जो ता जो ग्लेशियर से मतलब जो ना आते दी समंदर घर को लग खाने दी ना खंगमा से बहुत खान सा दिन छियन नो बात में ता जो आता जो तू लगे से आते सी लेवल राइज रे तना छी लेवल पर आते दी छी छु घटवा भी सोच से वजह से का आता दी असरत उचित हो जैसे बने दी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज सबसे पहला जैसे

0: चिक पुंगाती ग्लोबल इकोसिस्टम्स रतांगाती इकोसिस्टम्स रवनांगाती घर खोरी दी जामा लक्सुस जानवर सांगाती घर खोल लौतांग जुन गांव में कांग असर छे ताजु नी सिरे सिंगाती का असर छे ताजु तरंगाती घर खोरी दी जामा लक्सुस दी जानवर सा जुन गांव में कागज बना छे जबना जब दिन हम छत पु केत पीछे नदी छत पु रूप छाना दुना दी दी छरपय ऊंचास पे आया दी खय ऊंचास पे तब्दीली छचास पे जो मातांग दरे हर लो बालो थों माछे तंकी मातांग रुगुन लदी सना दी ग्रंग यो मत पिनांग दक्सन मातांग ग्रंग मयो माजे बाजार रुगुन ला छादी वन छदांग खय वका दिका मयो मा दक्सन मातांग मारिच अप्रैल खय वत आजु इचिंग आतांग बिहार पे थों मा जोंगाती मारिच फर माय सख पे मातांग दरे जून सख पे मातांग नमन खोरे नसे ताजु जो चीज छचास इना जो मौसम में बदल छचास की वजह से कदी अति दी क्लाइम अति दी नमजन चीज छचास की वजह से कदी नता थम मचे ता जो नी सिरेसी तना दी छत पुतेस के पी वजह से का यदि दी तब्दीली मंगमोस के पी वजह से का ता नुकसान चीज खची को ता जो जैसे कि नता तेज छरप मंगमो मना नता दी सैलाब मता जो अति नता लो खची न थम मसों 2010 में नता ले थम मसों जो चम नुकसान जों दी छरप मंगमो नता फुला जों नता ननी खबर बिहार हिंदुस्तान ज्यादा ही वजह से फार्मर नुकसान होता जो काफी जो फसल राशन सबसे पहला जैसे कि दुगार दिगे सुनगर ना बीच इंद्र जस बना
1: सार्वजनिक संवाद से नियमित संपर्क
0: तो जो मते शिलांग में तो मते जरे समर्थन पेट्रोल में तो मते गाड़ी सगा तो जो दी वजह से गांग दे बिम तो पाना मंडली ना कर्मचारी बना कार्बन डाइऑक्साइड जखा के गैस अनिवार्य अंशदाना या मीथेन जरे गैस मीथेन तो मते जरे शिलांग सगा दे तो सहस्त्र रुपए के क्या जून किमो मते जंगल
1: अपरिवर्तिता एवं तदनंतरम् च प्रशासनात् विसहस्रतमस्य वर्षस्य

0: तं ब्रह्माते इयं सीमा पञ्चदशसहस्ररूप्यकाणि यावत् समर्पिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन सैव नीतिः अपरिपालिता, यतो हि विगतवर्षेषु वेतनविषये आयत्संवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरन्तरविस्तारस्य च परिचेष्ये इयं सीमा पञ्चविंशतिसहस्ररूप्यकाणि यावत् समर्पिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहकप्रमुखः
1: इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्युभौ मिलित्वा सहयोगं वर्धयितुं नवान्वेषणं प्रवर्तयितुं विनिर्माण क्षमतां सुदृढीकर्तुं निवेशाकर्षयितुं भविष्यस्य कृते सज्जानां प्रतिभानां विकासाय च कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे षट् शततोप्यधिकाः प्रदर्शकाः।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क
1: यत् भारत सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयेन सेमी इत्यनेन च संयुक्त रूपेण
4: मैं यहाँ हूँ।
5: तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना था,
4: दिमाग चार्ज कर रखना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा आम हो जाएगा।
4: देखा,
5: अब रुकिए मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना
1: यमन देशे। वैध
4: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।

0: फ्रॉड को करो बाय बाय।
1: आरबीआई कहता है
2: करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: स्वीकृत्य हुथी विद्रोहिणानां द्वितीयः आक्रमण प्रयासः इति न्यरूपयत्।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800।
7: मीडियम वेव दोनों एफएम के जो आकाशवाणी करगिल किलोमीटर
6: हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम
7: Kasata flagship yani yergesi program protokol bilmezse program protokol kampanya set kasım.
8: Assalamu alaikum akashwani kargil kuna ya fasba program chukre ma set kasım sani tana katuk chimiro ni shuna sa yale program yan khani achinumon ta ka fonon entah muzinu tang ngacas akashwani kargil istrolika frama chip program nasiki muniskurla entah supa haguri kucupi frama chupat dena nitsuksla dirinyang legi na kakchang program chikure entah na katuk chenyot arti amma bet di program pong yanti fila franki chang program chik chok kasani program yan kanun entah taspa tang ngatang pura ngati Hindustani skurla ngatas katu zirna ngati Hindustani 90 se zyada parsan abadiyu ngata agriculture yani ngata sakhyati get bad bacha sika depend yotang ya natkal basi yotang yang lashik duang yang sperachik duang bhi machatang ki ngata nga nokri baad zaritang chana ngata nga abadi hesabika ngati Hindustan la tamam इंसान गंगमा जवान गंगमा शर्बनाचुन गंगमा रन रे नौकरी तम चुस्पाने दिखा मुश्किल नशी यहाँ देना चोसला गतांगा गति सख्यात पी का गतां गेत बद बचस पुमान छसा नशी नाम यहाँ गाने यारी हिंदुस्तानी 90% से ज्यादा आबादी उन्होंने रहा दी सख्यात पी करा गेत बद बेंजी यहाँ दुनिया का नाक कर बसे यन खानून निंगा ने रंगा सख्याती गेत बद बचस पुंगा ने रंग ले गिना खचन नशी गिना यहाँ दिलस प्यानू गा ने रंगा फनखे दो तब चैना चिप रिसिंग अनेरांगा अनेरी युंगी योजाइनं न्यूज़ रिसिंग अनेरांगा अनेरी अखराजात जान दून गांवदी कने भिंचाइनं सुम रिसिंग अनेरी दिलुस्पूर ग्याली कुशे सनं अनेरांग थुते का तुलुजना अनेरांग यंग चिका नटकल छचे गया यंग चिका रचे अनेरांग छचा मिना देफिला अनेरांग छचाव दुइनां की गतेस जितना हो सके गति शर्बनाचुं कुनला एग्रीकल्चर स्कूल ला सख्यत गेत बद बचे स्कूल ला गते अवेयरनेस ता से हागोता से खा दी स्कूल ला क्यों में फ्रलुक्स बार गुशेन निगन खान उन गने रा तुस पुदुस उक्षा स्वांग की गने रा सख्यत का लज बचे स्कूल गने रे शर्बना चुन कुन ला नक्ष चुक्षी गया बर्दुई चुक्षी अजियत की चुक्षी गया खचिगा नक्षल भी चुक्षी गया छोरे तो दुस चुक्षी में नंगने रा सख्यत पुना नटकल सकेत पनंगने रातु ते कतु लुज न कतु नने रंगा नने दि मिछेनुक रगोस पेति रगोस दु मे चलक जन फ्लम गंगमा नने रंगा दि सकेत पिगना तप चैनंग गा सुचिगे सकेतिका मेहनत बसे मशक्कत बसे लज बेतंग ख्वा खुरियुंगु हरदमन निंबो यों चाइना यं खुदी मिशन और गैल्बे बसे स्प्रेल बंगें चाइना। यं खानून अनेरार तास्पर तंग अनेरी जन पुचमिन बल्कि अनेरी गोंडा गोनां सक्यती कना बिंग मचाता। तेरे अनेरा कॉटनी आते स्प्रेल का तुताना अनेरे हिंदुस्तानी फ्रमची मार्चों ने अनुक अतां कॉटनी प्रोडक्शन अंग बाचाता। दुगंग मा आता सक्यना लेनदेन युद्धी लशिकिना निगने रंगा जितना हो सके दुनी का फोकस बसे दुनी का अंगने रंग खेलवा मशहूर पास सके थी लज मशहूर माना खाचे शिक इना

0: किसान सम्मान निधि योजना जरिए दयानुक माता 6,000 हर साल चीन 4 महीने की अपना 2,000 दो नंबर माता लद्दाख ग्रीन हाउस फ्लैगशिप स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से अनुमोचन लद्दाख ग्रीन हाउस जरिए और साथ ही साथ नती राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जरिए ड्रिप इरीगेशन जगह से छोटे तो ड्रिप इरीगेशन सब्सिडी तो जहाँ पे पानी की किल्लत होता है वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन पावर टिलर
1: पीएम किसान ने इसको लेरस पूरे सर्पो का समोचा कि स्कीम पु नता गच अवेल बाइन चेन दिया डॉक्यूमेंटेशन चियो या प्रोसीजर कुछ चियो एलिजिबिलिटी के लिए चियो दोनों इसको लेरस
0: दक्षिण नता दियो नो पीएम किसान जर्नजु नता दियो एक इम्पोर्टेंट लेरस दक्षिण मौसम 6,000 अगर कतो किसान चाहिए होना कतो नॉर्मल किसान चाहिए 6,000 सालाना यो होना कतो हो कम से कम उधर 11 वैरायटी
2: किसान बहनों भाइयों आज हमारा जो विशेष कौन कार्यक्रम है विशेष और ज्यादा इसलिए हो जाता है कि आज हमारा विषय है गन्ना फसल में एआई यानी
0: आर्टिफिशियल प्रोड्यूस फॉर याला शाच को दे पेने को उदा
2: ये आज तो हम गन्ने पे बात कर रहे हैं हो सकता है आने वाले ऑर्गेनिक मैन्योर चीनी और बात करें या जगह चक्कर तो ये विषय है आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर
0: नगतो उदा उनको इनपुट से तो मिला को चीची थोस में चोट नगतो
2: दोनों बहुत ही गुणी आदमी हैं
0: मिशन
2: कोई भी जितने पढ़े लिखे हमारे किसान भाई सुन रहे हैं इस वक्त में वो जरूर आगे आए वो जरूर हमें फोन करें जो सपोर्ट चीज ऑक्सी तो उनके दिमाग और में कुछ अगर सवाल है 2019 वो हमसे जरूर सवाल करें और सवाल करने का तो बहुत सीधा तरीका है फोन नंबर हमारे यमुना बहन ने बताए थे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ 2342 1786 दिल्ली के स्टूडियो के नंबर है तो आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं तो इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का जो एसटी कोड है 011 वो जरूर लगाइएगा उसके बाद फोन कीजिएगा तो सीधे हमसे आप जुड़ पाएंगे और विशेषज्ञ जो हमारे बैठे हुए हैं
0: जहाँ पे आपके फैमिली में जो भी बात रखेंगे जो सवाल रखेंगे जो भी परेशानी रखेंगे तो और यार यारी मिल का साथ अपना का तो और यार अच्छी बचन बनाना अच्छी
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब फॉर्म पे ऑफलाइन प्रोसेस हो चुका है फिलहाल ऑनलाइन मशा और पीएम किसान सम्मान निधि जरिए फॉर्म पुखे से यार देखना यार पटवारी का
2: उसमें डॉक्टर कंडीशन बात करे
0: 2019 बजे पहला
2: वो जो बात करने का जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि आप फसल चाहती क्या है मशीन बात करेगी और वो बताएगी किसान को कि आपकी फसल ये
0: चाहती
2: है अब बात ये है कि डॉक्टर साहब खास तौर पे गन्ने की बात करें
0: तो गन्ने में किस प्रकार से दुख की मतलब
3: उन्होंने जज किया कि मेरे खेत में लीफ का कलर बदला जो भी उसको दिखाई दिया उसने डिफरेंट
0: बेसिकली
3: यहाँ से एआई थ्रू ये होती है
0: लेवल वन से लेवल वन से जो भी किसान सम्मान निधि फिलहाल
2: हेलो
0: साथ में यार ओदे शोक शोक पटवारी के ओदे शोक शोक को चिन दोनों अच्छी ना फॉर्म पुस्तक चिन द दीर के अपना यार इस दी ऑनलाइन पोर्टल का चढ़ाई बचिन अति कैफे चले सो दे से शोक शोक ऑनलाइन रिकॉर्ड तुम गामा जैसे यार इस दे कैफे का सो से ओदन गामा दन बस यार इस अपलोड बसता माना
2: देखिए कवरपाल जी वही बात हम कर रहे हैं डॉक्टर बताइए कि बिना गन्ना काटे
0: शुगर का जो पता लगेगा एआई के
4: द्वारा अगर बात करें देखिए कवरपाल जी जो हम बात कर रहे थे कि एआई का कहां का इस्तेमाल हो सकता है जैसे हम देखते हैं कि किसी भी चीज में चाहे आप गन्ना ले लेंगे या किसी में भी अगर उनमें कोई डिफरेंस है अगर

0: बसेन नोडल ऑफिसर निकलता चिन्ह
1: एक गन्ना है
0: मैंने कोई लेवल के चेकिंग बसेन है देखना
1: दूसरा गन्ना है
0: सॉरी जो देर अपना को दी इंस्टॉलमेंट नहीं होना
1: नेचर ने ऐसा रखा कि अच्छी
0: मेजर ड्राइव चिप चुडू ने जो दे जगह अती जना पीएम किसान सम्मान निधि स्कोर लाया ऑर्डर शिप इज बीन की चाम से एक बेनिफिशियरी अंडर पीएम किसान उतना का तो उन नामा हर साल ई केवाईसी बनना जरूरी है ई केवाईसी बच्चा जब इंटरव्यू से बना जगह की मदद छिंदलो जो कि मतलब किसी की डेथ हो जाती है क्योंकि साउंड अति अतानी में का या अपुन में के मनो चलन का तो कभी कुबार दो सोच छिंदलो कि मतलब को दुनिया तक नजर गले ना वो दे पेने फालतू को अकाउंट पे छिंदलो अब वो रिकवर करने में भी मुश्किल हो जाता है वो देन वो पेने छिंदलो पास्ता बैंक पर नहीं समझते
1: जो चार पांच पैरामीटर की एक
0: दक्षिण नतान दो स्ट्रिक ऑर्डर उत्की है मतलब हर साल जो केवाईसी बचा जाना दक्षिण अच्छी डिपार्टमेंट ने गाज ऑन चाहिए ना का तो दक्षिण अच्छा मेजर ड्राइव टू लेना
1: इसीलिए जो ए आई है इसका सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया है वो डाटा कलेक्शन है। आपको पहले से वैराइटल सिनेरियो आपके पास ये प्रजाति आपने लगाई है इस प्रजाति का मैच्योरिटी पीरियड इतना
0: बींग से मेलू शिक्षण मेला अच्छी हर फार्मर बीन ये सब पूंछ अच्छी स्टाफ सब दारे ना ना सोच सोच सकते चीनी में जो ना यार डूब बनी है जो बीमार जो ना उधर ना सोच सोच सकते हैं किसान सर पानी से कोई एक ऐसी चुवाते
2: कैसे जो उमा ना ये रसल पुव संगता पीएम किसान स्कूल ले मोर सांसु तदुमिन में यंग आता एंटी डिपार्टमेंट ना सोच सकते ताक ग्रीन हाउस जिन चिंगता ठंड संगा जो चंदीयु का स्कीम ची इंडिया का चोगा ना ताक फायदा दूसरी केरे संगता में वास कर मोर
0: चीज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रिलेटेड सीएसएस इन ऑगस्ट लगाती दस साल लदा ग्रीन हाउस से
1: नॉर्मली पूरी फसल हार्वेस्ट नहीं करनी है गवर्नमेंट ने
0: कहा दस साल फार्मर्स गैस इंटरेस्टेड फार्मर्स उतना का तो दस साल जो पिछले साल के
1: अंदर आप पूरा गन्ना खड़ा है पूरी फसल खड़ी है आपके खेत में एक ड्रॉप हम उसकी लेंगे उसे रिफ्रैक्टोमीटर में हम डालेंगे उसे रिएक्ट हो जाएगा और वहीं पर हम उसका एनालिसिस करके बता देंगे कि
0: बाकी अति गांव सानो एग्रीकल्चर को अति खारी खुद गांव में हमने बता में
1: जिस खेत में
0: फ्रेम पुना पॉली कार्बोनेट शीट पता चल और पॉली कार्बोनेट शीट पुंगाची ओचिन 16 एमएम नक्सा शीट का चीट नॉर्मली बाजार लेरा तो कौन की 6 एमएम शीट ओचिन पॉली कार्बोनेट नक्सा डिपार्टमेंट इज फ्री अ तंग हम को ओचिन 16 एमएम शीट दोन मान में लो दो जोड़े शीट को और चक से फ्रेम और देन अंगो से यारा सपोर्ट तो चीन छे छे पोल था कार्यक्रम
1: ही आप लोगों के लिए तो आप चाव
0: विक चाची बन चाव ट्रांसपोर्टेशन दी के ना सामान खर्चा चाहे कोई ग्रीन हाउस कोई
3: मेहरबानी है किसानों की आय दुनी करल खाने में लगे हैं वैज्ञानिक
1: और डिपार्टमेंट से बताएं
0: मार मेन चीज कोई फार्मर को रेस जो सुमिर सिक पर देमो बसर शिक्षा अच्छी डायरेक्शन है साहब और सी पीपी को सुनना लगा चाहे एप्लीकेशन पर चाहिए एप्लीकेशन पर ता से ना दे के अपना कोर्स लगा जॉब काटी कोई फोटो स्टेट पर चाहिए उधर ये अपना लगा पूरा लिस्ट पूछो से ना उधर लिस्ट पूंगा चस का ताचिन चीफ ऑफिस ला
3: और हमने उसमें
0: चीफ ऑफिस के ना दो चस का ताचिन आके एसीआर लगा एसीआर ना दो अप्रूवल सो से ना दो को नरेगी अंडर ओसे ना करगिलो दो सो सिस्टम चलो सो दे ना चीफ सर्विस की मतलब नरेगी अंडर को दक्षलास मबा कोई लास को गमा ग्रीन हाउस
3: से हमें क्या करना है कि जिससे हमारी साल के तौर में अच्छी ना अच्छी हमारा का तो जॉब करो और जो उसमें हमारे ओदे का लास दशा मिर्गो शाह
0: ग्रीन हाउस पे अनुशो बसना ओदे पेने गमा को बारे में साल सालाना चम से उम्र ना तो दो को ऊंचा सूरज बाकी ग्रीन हाउस पर शिक्षा यार दो बसे देर के अपना कंप्लीशन पर सो सा प्लास्टर बसना अच्छी स्टाफ
1: एक बहुत अच्छा प्रश्न है तेवतिया जी और क्योंकि आपका एक जीपीएस फोटो लेने का सोचा था ना जीपीएस फोटो लेने की व्यवस्था से अच्छा कर दोनों फसलों का ध्यान रखें कि हमें दोनों फसलों का उत्पादन अच्छा मिले
0: आगे फर्दर
1: हमारे गन्ने की फसल का भी उत्पादन अच्छा मिले और उसमें जो हमने सामान ले बात लगा ग्रीन हाउस लगाए हैं क्योंकि यहां पर आपने प्लांट की बात की है पौधों की बात की है कि उसमें आपने आम अमरूद इस तरीके के पौधे लिए हैं लीची के पौधे भी हैं ये जो पौधे हैं लीची के आम के अमरूद के छह फसली के एक और मैं आपको नियम बता दूं छह फसली गन्ने के साथ जब भी हम करते हैं उसका नियम ये है कि गन्ने की जो फर्टिलाइजर डोज है वो अलग दी जाएगी मुकाबले में जो छह फसली ली
0: अगर हो सकते हैं आगे आने वाले दो तीन साल लगातार खत्म नहीं कर पाएंगे
1: क्योंकि उसमें प्लांट का बायोमास प्लांट का
0: तो जो आज से सात आठ साल पहले
1: जो जैसे अब ये आपने बताया पहले साल की फसल है पौधा में पूरी भी नहीं बनी है
0: बाजार अच्छी दूसरे चल भर उस पर
1: लेट बोया हुआ होगा गेहूं काटने के

0: दादा ग्रीन हाउस में रहा तो चौक जो कि अच्छा दफ्तर सर्वे बस तक अच्छा रहा तो यदि हम रेट तो खून जिंदो अच्छा और गुल जनवरी में हम अच्छा खासा
1: पहला तो ये कि आप उसमें जो बुआई पे भी फर्टिलाइजर डोज पूरी नहीं दे पाए हैं
0: वो कंता 20 से 25 दिन और डिक्स से 25 दिन से पहले
1: नहीं दी जा सकती क्योंकि इस समय
0: चना जी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पुनी मीनास द देना जो है इनकी यहां में सब ग्रीन हाउस की कोशिश बचा यदि आप अपने स्कीम को आता है गुल काफी टाइम से और हो सकता है अगले साल

0: आप तस्वीर ने
1: उनका मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि इसी साल का प्लांटेशन है, तो एक मीटर का जुरिस्डिक्शन, एक मीटर चारों तरफ उसकी जगह खाली रखना। अन्यथा की दशा में क्या होगा, आपका गन्ना तो अच्छा होगा नो डाउट, बट वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो उसकी रूट हेयर डेवलप हो गए समय वो टूटती रहेगी। प्रोसीजर नहीं होगी जो ज्योमेट्री आपने लगाई होगी, जो पौधे लगाने का तरीका होगा वो आप वेल नोन जानते हैं, लेकिन दोनों को फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके अलग अलग ही फसल अच्छी होगी मेरा मानना है। इंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
2: गन्ने
1: के साथ फसली जो हम फसल लगाते हैं दूसरी
2: आप
1: क्या सुझाव देते हैं, कौन सी फसल जैसे इंद्रवीर भाई ने लगा दिया
2: पेड़
1: उनके पेड़ लगाए हैं सारे बड़े सारे बड़े हो जाएंगे लंबे चलेंगे
2: कौन
1: फसलें हैं जिनमें सबसे ज्यादा फायदा
3: बिल्कुल छह ना दू माना इम्पोर्टेंट चीज यंग ठीक खास करते
2: जैसे बाकी जोन उन्नासूरी ngati farmers as kafi interest show bindu jo dur sikchas mein aur sikchas pankon mar dumor sik pa jana aur ngas ga farmers ki lalab nakatong as ko clear instructions
1: ta namaskar ji kon sa bol rahe hain
2: problem madar mein
4: bhai ban kilal gaon manawali ka patwa de jana ji
2: gaon mein
1: ban kilal ji bataye kya sawal hai
2: na kon sa mobile
4: number ta mere samjhe ye humne 2 acre mein ganna laga rakhe hai
2: agriculture related ya chyod nakatong acha chok phone bolte
1: raho
4: aur usme stuff sa mal lo aapke aur saath hi saath dada ki house par bhi ho gaye uski bhi और हमने कमल की दो सप्रे भी डाल दी उसके अंदर
2: तकरीबन 65% कंप्लीट सोंस इन जो
1: अभी कारण गिनो कितने हो सकते हैं पीला होने के।
2: विल्टेक
1: बीमारी होती है उसके कारण भी पीला होता है।
2: तीसरा
1: रूट बॉलर के कारण भी पीला होता है। चौथा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण भी पीला होता है। पांचवा बागपत डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट शामली डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी का मैं जहाँ तक अध्ययन किया है आज की डेट में व्हाइट फ्लाई के कारण बहुत सारी पत्तियाँ पीली हो गई है। अब हम उन चीजों को कोरिलेट करने के लिए मैं
2: आता हूँ और दो अच्छा खासा
0: पॉइंट पे लेके आता हूँ। जैसे आपने बताया एक दो झुंड पीला हो रहा है,
2: अचानक देर
0: दो निवेदन है या तो आप गाइडलाइंस में आपकी या समय पर पूरा गन्ना ऊपर दो कर सकते हैं। उसके अंदर ले मंगोस लाल और दो कर सकते हैं यार, चलो दो ने बता दो चंद कमी जमीन दो पे जो खुदा के उसे अंदर से सिम्टम लाल नजर आएंगे।

0: लाल स्पोर्ट में नजर आ रहे हैं, लाल और सफेद रंग के डब्बे हैं, हो सकता है रेड होता है। यदि लाल रंग के डब्बे नहीं है, पिच एक अंदर होता है, उसके अंदर एक छोटी सी
1: काफी अच्छा लगता है, लाइन बनती है, फायदा होने के लिए अक्सर अच्छा टंगोल खुरा दी जाती है, चार पांच नफर हो जाते हैं,
0: गन्ना फोकला हो जाता है,
1: पिछले साल मतलब तीन नफर प्रारंभिक अवस्था
0: में, लेकिन बीच में फोकला हो जाएगा। इस प्रकार के लक्षण बिल्ट में नजर आएंगे, पत्तियां पीली हो जाएगी, झुमझुमाती हो जाएगी।
1: काफी फायदेमंद काफी
0: यदि आप काटेंगे तो जैसे जब वो पीला होकर सूखेगा तो काटेंगे तो कटेगा आसानी से नहीं, हार्ड नेक की तरफ जाएगा,
1: इट मीन
0: तीसरा कारण रूट बोरर भी हो सकता है। देखो मैं इसीलिए कहता हूँ उदाहरण से
1: समझते
0: हैं, हम खेती के डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हमारा जो मरीज होता है ना, वो बगैर मरीज के आता है,
1: अगर तो
0: केवल अपने हाइपोथेटिकल लक्षण लेकर
1: आया।
0: ह्यूमन बीइंग के आदमियों का डॉक्टर के पास जाता है, पहले पेशेंट के पहले चार टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर देते हैं अपना इरेज डॉक्टर करना क्या है। और हमारे पास सारी चीजें होती हैं, कल किसी को कुछ भी दवा बता दो, मैं लेकर जाता हूँ, निवेदन करता हूँ, मतलब मैं दवाई ना लें, दवाई का निवेदन है, आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है जो रिसर्च सेंटर है, जाना
2: मतलब दवा मुझे भेज दूंगा, था मैं मास्क ने जिसकी मुझे निकला है, जितना हो सके फायदा लेने में फ्रॉड बचा, छने एंटी डिपार्टमेंट हिस्ट्री का काम ही मास्क होगा या गसोसला अवेयरनेस सिस्टम का दिस को ले सबसे मोचा जो ने अवेयरनेस पुंगाता साम सिक सत साम सी इंपोर्टेंट दो दिस को ले सबसे मोचा
0: जो छोटा से रहे हैं जो आप बता सकते हैं, नो डाउट आपके अवेयरनेस फोन पे भी हो जाएगा, कोई दौरा नहीं,
1: मैं अनुक एक बार आप वहां ले जाओ उसको देखो,
0: और नहीं तो आप मेरे पास भी भेज सकते हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत कम कॉल आते हैं पूरे हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी से, जो काम कर सकते हैं या तो आप केवी के मिले जाओ, वो दावा दिखा लो या वो दा लेके पूरा चीज के डॉक्टर से संपर्क कर लेना इनके सेंटर पे, और बताते जाना जो ये पूछे उससे भी समाधान हो जाएगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: ठीक बस स्वल्प बस चर्चा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम चीज चेंज जो बेचारा गांव पर मिल जाना कौन कारगिल मामू इसलिए बने
2: बिल्कुल
1: लेब नगर तो कौन ऑफिस लोगों का सबसे सबसे परिचित उसके दूसरी आज चीज है धालन की दो चौकी दफ्तर माने यो पिलना था ना जो सिटी बना है
0: ना तो यो पे ऑफिस है ना मोटी कारगिल पाया ना दस मैं क्या था डॉक्टर
1: का लॉस प्रिया ले पाया कारगिल पाया दराज नमस्कार का सब डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ नहीं ना कसर जो मतलब दफ्तर का तोलता ना
0: वो नॉलेज
1: साथ ही साथ वो प्रोग्राम ने हम अच्छे से सनम अच्छे से पूरा कवर जो दी तेसरो जोन से रियलिंग सुपर उदय तीन हर वेटनेस जाता चीफ से ऑर्डर बिल्कुल हर पंचायत गाड़ी का उदय प्रोग्राम को चर्चा और फार्मर्स को या जितने भी बेनिफिशियरी हो उदय लगाता है माइन्यूट
0: लेवल पर जाकर डिफरेंस आता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में और आपके डिजीज
1: कल्चर हो उदय नमस 29 के बारे में सल्प
0: वर्सेस इस एल्गोरिथम को इसको कैसे साथ ही साथ नचस
1: दिया लोग नति डिपार्टमेंट ने नमस नचस ट्रेनिंग सब
0: अभी तो विषय हमारा बहुत ही विस्तृत है बड़ा है हम
1: इंटरव्यू जारी रखेंगे या मैंने इंट्रो नचस दिया टू ऑर्गेनाइज हो चुका प्रोग्रेसिव फार्मर साफिला जगह मोहम्मद हो जो लास्ट बखन मार गया यो हो चाहे नती अचनोमी गिनना या अमे गिनना लास्ट बखन मार गया हो मार खुआ चिर को शांत जो बुलिक एक्सपोजर सी
2: मिलकर
1: वती मिसाल के तौर दी टमाटर
0: पूरी चला तान
1: नॉर्मल देर परसेंट तक शांत पूरी गिना या जैसे हिमाचल में लता ना है बढ़िया खाते कोशिश रे तो
0: स्थान के ओदन में
1: हंगर से सुना पसंद सिस्टम जो होता है ना अगर टमाटर और दो बस जो
0: सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए खोज
1: जल्दी टमाटर को नीचे नहरा जैसे जो सच में पहुंच जाता है उधर का चक्कर लोमा वजह से निमान
0: तब से भरपूर
1: उगा हो खूब कमाओ मना इंटरव्यू या इंटरव्यू
0: में
2: अवेयरनेस जो मैं लेकिन बेहतरीन स्कीम दुखा स्कीम को फायदा लेंगता मन मंगमी लुशा दुख तुसा इजाजत चितामेंदो हदी अली साहब यहाँ आकाशवाणी करगिली टीम छोसना यंग सचिव अजू सर मुजू यानी तुसान तुस्तान सहरा आकाशवाणी करगिल दियामा बेजू दी खसको निकलना मासकोने सबक चलू यंग सचिव अजू सर मुजू यू इजाजत चितामेंदू जू दिन इस प्रोग्राम को देने के थमा थन यंग

0: ba program ci kuri antana katuk chok diamanchi ngacha ijazat chalte bos yaju
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 13,000 रूपए
3: पिछलुमन खोर्तांस पोखरे फातिमा यंगर सी गंतनास का थुकसों से खोर्तांस लाइन ने न्यूटन शर्मा सुन से गमा विशिदाना सलामजली फुटबजन सोशी
1: रुपए होने का अनुमान है।
3: दिलिंगसी खोर्तांस पे अनुमास यंतां सुपा यंग फंके थुबा भी खंदुशी खुरियों से प्रद्यामायो द्यंतां फंकेरे थुप्तु
1: पंजीकरण प्रमाण पत्र कसनी गोमांगा यंतां सुपा
3: प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर इस कोटला स्पिरेट लिचिगे देवना यंतां सुपा टांचिगन लिचिगे कसनी इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर चेजर चेजर चेजर कतो नी गोमांगा ओजोन लेयर पुखरों
4: से फिला एक कुदरती स्रोत जैसी जैलिक नजुखशी बसे लज बाजू निधि ओजोन लायर पुस नीमी कना योमी ओदे फ्लोत खे नोपीज ब्रेज जिगो मता मतिस यूवी रेजरे जरतां निखिमी थी गानो ग्योत भी ओदे स्प्रेल पो उमसा छुपा मता लेपचास पे कनास गफचा इंचु एटमोस्फेरी सकबत से खतुए हिस्से का ओजोन की एक छिर्ष गुमा चुप गवा
1: और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लेन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास साझेदारी ऊर्जा व्यापार संपर्क संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही
3: लायर पेका दिछिर पेका अश्नुतके फोक्चा इंचुक दियांगना सी एफ सी एस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन

0: जो युवा किसान है अगर इस समय सुन रहे हैं, मेरे को तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृषि की तरफ ध्यान दीजिए। आज का विषय खास तौर पे हमारे जो पढ़े लिखे किसान है, युवा किसान है, समझते हैं एआई के बारे में, जानते हैं उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है आने वाले समय में, आप जरूर हमें बहुत समय है, फोन नंबर बता दिए हैं, आप जरूर फोन कीजिए। हाँ जी डॉक्टर बाबा, चर्चा में आते हैं, थोड़ा सा समय है, लग रहा तो है मेरे को, फोन आ रहा है, एक बार बताइए आप। पहले फोन ही ले ले, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: निधि ओजुन लायर पोस गंग गंगमी ओदे जिक्समो जिक्समो इत ओदे ब्रेल पे कना गता
0: हां जी बताओ विकास, क्या सवाल
1: है? सासा लसका तुम बताओ, दे फिलाती स्ट्रोंग लुक्स बचाओ मती कमाना एक छोगो खाची
2: व्हाइट भी और ब्लैक फंगस आ जा रही है, जो चिकन जिरे बिट्टी
0: भी चिपक रही है, जो चिकन हुई है सफेद और काले से धब्बे और बैक साइड में है, पत्ती की उल्टी सतह पे या सीधी सतह पे?
2: बैक साइड में भी है और सीधी सतह पे भी है, सीधी और तरफ भी है।
0: हाँ हाँ बेसिकली जी
2: सर, मैंने स्प्रे भी करा
0: है। किस चीज का?
3: जापी का दी मतलब इंटरनेशनल
0: नहीं नहीं, स्प्रे किस चीज का किया? स्प्रे किस चीज का किया?
3: यंग स्प्रे
0: स्प्रे किस चीज का किया? कौन सी दवाई स्प्रे कर
3: रही हो? छना दी जापो गतिस इंटरनेशनल ओजोन डे जेरे वतिस माने बाजू छना दी 16 सितंबर 1987 ला छना दी मॉन्ट्रियल
2: मॉन्ट्रियल
3: जनरली खाता करड़ा
2: करड़ा खाता स्प्रे करा दे, लेकिन ये तो हटिंग सर्वे और ज्यादा ही
0: जगह का। ये दोनों ही समस्याएं बागपत सामली मुजफ्फरनगर मेरठ जनपद में देखने को मिल रही है। व्हाइट फ्लाई भी है और माइट भी, दोनों ही, क्योंकि पत्ती की निचली सतह पर जब सफेद और काले रंग के धब्बे मिलेंगे तो इट मीन्स वो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी के कारण वहाँ पर सफेद और काले रंग के डॉट।

0: से आपको दिखाई देंगे और उसके बाद वो पत्ती
1: ऊपर
0: से भी काली पड़ जाएगी बिल्कुल। मैं उसी की मकड़ी वो माइट जो है मकड़ी ही है, लेकिन लेकिन एक चीज मैं इसी के साथ जोड़ता हूँ विकास जी, आपके जुड़ने से पहले मैं खुद ही अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि बागपत जनपद में या सामली जनपद में या मुजफ्फरनगर मेरठ जनपद में
1: ये और ओजोन की
0: महत्वपूर्ण कारण बताता हूँ कि एक तो स्प्रे करने का तरीका है वो और एक दवाई जो टेक्निकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। मैं आपको वन बाय वन आग्रह करूंगा। पहला तो ये कि जब भी आप स्प्रे करें हमेशा एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा कि इनका जो लाइफ साइकिल है चाहे व्हाइट फ्लाई है चाहे माइट है बेसिकली इनका लाइफ साइकिल वो छोटा है, 10-12-15 दिन में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर देती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपके खेत में आपने स्प्रे किया और आपने 100% उस दवाई आपका अच्छी थी आपने 100% वो खेत साफ किया, लेकिन 99% किसान जितने भी मैं किसानों से बात करता हूँ बागपत में मेड़ पर कोई स्प्रे नहीं करता, रास्ते पर कोई स्प्रे नहीं करता है, खेत के कॉर्नर खरपतवार जहाँ पर है वहाँ पर स्प्रे नहीं करता है। कारण क्या हुआ, हमने अपने गन्ने की फसल सुरक्षित कर 100% वहाँ से इंसेक्ट को रिमूव कर दिया,
2: वही हो गया डॉक्टर पॉइजनस हो गया, निकाल के बाहर गड़ी में डाल
0: और उसमें वो अल्टरनेट होस्ट के ऊपर वो जिंदा रहती है। जैसे ही एक सप्ताह 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपके खेत में उस पॉइजन का उस जहर का असर कम होता है, वो दोबारा से आपके खेत पे अटैक कर लाइफ साइकिल कम है, वो जल्दी से फिर दोबारा से अंडे देके आपके वहाँ पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। पहला तो निवेदन ये है जब भी हम की बारिश स्प्रे करें हमेशा मेड़ को भी अपनी मान के चले, पड़ोसी को भी जब स्प्रे करें उसको भी कहें भाई साहब जब आप स्प्रे कर रहे हैं इस मेड पर भी है जो अल्टरनेट वीड, क्योंकि पहला तो नियम यही कहता है कि आप मेड को साफ रखें खरपतवार रहित रहे, लेकिन बरसात के मौसम में आपके वहाँ पर खरपतवार बार बार उगते रहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खरपतवार को भी मेड हो चाहे वो रास्ते के साइड हो उस पर तो 100% कंट्रोल होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। दूसरा केमिकल एसिटामिप्रिड करके आता है आप उसका इस्तेमाल करें, इमिड आता है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन 10-12 दिन के अंतराल पर दोबारा से रिपीट जरूर कर दें और टेक्निकल को बदल के। आपने पहले इमिड लिया है अब जा एसिटामिप्रिड को ले लें, यदि पहले एसिटामिप्रिड लिया है तो जीवाणुवार मोनोप्रोटोफॉस्फेट ले लें, तो इस प्रकार यदि आप दूसरे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को ले लेंगे तो वो बदलने से इंसेक्ट में रेजिस्टेंसी नहीं आएगी, वो पौधे पर आपका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ की टेंडेंसी क्या है, मैं एक और विकास जी आपको भी रेफरेंस देते हुए बता देता हूँ कि एक बार आप दुकान पर गए और वहाँ पर आपको क्लोरोसाइपर का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल गया, आपने लाके खेत पे स्प्रे करा उसका रिजल्ट मिला, तो अगली बार दुकान पर जाएंगे तो बोलेंगे वो क्लोरोसाइप वही दवाई देना जो पहली बार दी, आप उसको लाके फिर ट्राई करेंगे उसका फिर रिजल्ट आएगा, तीसरी बार उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऑब्जेक्शन करेंगे दुकानदार अब की बार आपने अच्छी दवाई नहीं दी, अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं, हो सकता है दवाई अच्छी हो सकता है दवाई भी गड़बड़ हो, लेकिन जब दवाई अच्छी हो इट मीन इंसेक्ट में रेजिस्टेंस आ गई है, बार बार एक ही इंसेक्ट की बढ़ी उसकी सहन इसलिए केमिकल को हमेशा बदले। दूसरा मानसून सीजन चल रहा है जरूर मिला है, यदि आपने उसमें सर्फेसेंट सिलिकॉन बेस स्टिकर नहीं मिलाया है तो हमारी लीफ की सरफेस है वो उस पानी को उस ड्रॉपलेट को बड़ा जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिस कारण से वो वहाँ पर यदि 3 घंटे बाद बारिश हो जाती है 4 घंटे बाद बारिश हो जाती है तो उसका दवाई का इम्प्रेशन उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, यदि आप उसमें सिलिकॉन ट्रेडिशनल ऐड करेंगे तो नो डाउट वो ड्रॉपलेट नहीं बनने देगा, हमारे उस वहाँ पर ज्यादा अच्छा आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण है और बड़ा अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि हम एआई को सुन रहे थे आवश्यकता इस समय इस मैसेज की भी थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आवश्यकता है व्हाइट फ्लाई की भी और माइट का भी बता देता हूँ, पत्ती की निचली सतह पर जहाँ पत्ती की निचली सतह वहाँ डॉट डॉट डॉट डॉट बनाते हुए और लाइनर मिलते हैं, लेकिन उसमें मेरा निवेदन है या तो लाइम सल्फर और प्लस चूने का इस्तेमाल करें 400 ग्राम सल्फर और 15 ग्राम चूना प्रति एक किलोमीटर से 2 लीटर पानी में, या फिर एकेरिसाइड का इस्तेमाल करें प्रोपोगेट करके विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं।
3: हेलो,
0: मैं अब्दुल हमीद।

0: उसकी तो जो
1: पशु
0: मेन है कि इसमें पौधे में बीमारी है, तो चलिए आपने स्विच किया, लेकिन जो उसके आसपास मेड है या उसके आसपास गैप है उसमें से अगर स्पोर चले गए और या उसमें से कोई पेस्ट आ गया उसको पहचान लेना, उसके लिए हमको मॉनिटरिंग करना।
2: जी डॉक्टर साहब, फिर रोकूंगा आपको, एक फोन आ गया है। हेलो
3: नरेश भाई, नमस्कार।
4: नमस्कार जी, सुपर यंकस स्पिरेटिक इंडियन न्यू पिन डॉक्टर मोहम्मद हुसैन कहना लेना टॉप पर नंबर दिल्ली से आशीन वाली खुर्तांस पोत हम तो नन्हे दुनिया यहाँ यंता नंबर थुक थुक देमन पुंगा इजाजत शेष बोल जाशी खुदा नर सुमानी फरियो
5: Durante este programa, haciendo un inicio en el PIN, Miriam Mayuto en FM Cativo, Akashwani, Tartillán.
2: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?

0: नमस्कार जी डॉक्टर साहब,
1: मीडियम में भी
0: डॉक्टर परे आप,
2: हाँ नहीं उससे पहले हरिओम जी अगर सुन रहे हैं तो उनको क्या एक पूसा का प्रोग्राम चलता है वीकली, पूसा व्हाट्सएप सलाह, उसमें आप अपना फोटो भेज सकते हैं जो भी समस्या है आपको, नेक्स्ट वीक में उसका हम एआई की बात करते हैं।

0: इतने वाटर सेविंग के साथ
1: युवा सान्तोनला सनलोसङ निजन चुब्दुन्यानु गहोसी उनिस ब्यालिस्टिक हमला उनस मलेन ख्योस्का निमिन्जरे एजेरेन खोजा साउदी अरबी गोयत्यां चिकडिलपु युमी हमला उनि लोकपाला शंटेबासे लेन जोकचा सिन्जरेंग अजर बसों दिवसला होसी उनस गस मक्का ए मुअज्जमे का हमला बचा स्पेकन अल्लाह लेंस दि हमला साउदी अरब न होसी ने बरंग नमजा ओसुर चंचा चाउस बसे मलेनु को यु सिन्जरे एजर सेट नेशनल कैडेट कोर एनसीसी बोमो बुसा इंगिशुस लद्दाख से थन ममाल सावनी अपराजित प्रंगला 2026 पे ट्रैक पुल लक्षिप नियंबो उगार क्या बसेन दी कैडेट उन सागस किलोमीटर फिना सुंगी थकपु जखमा सुंचुएन उगार क्या बेवक्सला गंग सीरी खायुलुन दुना अर्गियम से मलसावना एथन ममाल सावन और गले घर क्या भासों दी छपास हिमाचल प्रदेश किबर पेकनता से लद्दाख से करसुक सुपा दी ट्रेक पु गांधिया बस खान इन मिन गवासला खोने एम्बो मुतालुक ऑफिसर ट्रेनिंग तंग खानुन और देलुक से लस्मियुन दुना रुख से लस्मियुन सगंग अद्रे से युद पिन दिल्ली लद्दाख से कर्जो का खुरी समझून गुन चुके नेशनल कैडेट कॉप से डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र व्हाट इज दी मुहिम पु लक्षिप नंगियम्बो घर के बचा स्पे का कैडेट सकना सिटाफ ला मुबारक बातास खोजा दी जाती लसन सगे के नशर बना चुनियां गोयो तो रंग चोक टीम वाक दुना लक्षिप शनर दिया पुलिस के तामिमिन रोक छचा इंजरियां असरीन सनालोस्तोंगिस नंग इशुर सजरुगी स्वच्छता ही सेवा मुहिम पु आसके नफल्ला गा उस गैस्ट्रीट घं प्यां को जुक छचाइन गवेनांसों उस गैस्ट्रीट घं प्यां उस शर्बना चो उन सगी खापूर तन पुर्चो से छोक्षी गुंबा उन लेनिर चांदक न ख्यक्मो युल्चिक और चुए मी नफ्रालुक सुन बचा इंजरें अजर सेट देवाना अक्टूबर इंगिसला गांधी जयंती वक्स को नजोम से मलसीमा लर्ष सांदा रिस्कोर ला फेस्बा प्रोग्राम रिगे ग्रल से रंग भाचा इंजर है असर बसों और तख्ते मी नजर न स्वच्छ भारत मिशन पे नाल चोस अज गया स्ट्रीट गां पे न करोड़ चुनिस बसां खीमो छक्सा नर्चो सेन गाज बसे गा मलसा चिगी का शिक्षा स्प्रे करना सक्षित सों से बोमो न आने उन रिन नर्सिस दुना स्ट्रोंग लुक्स प्लस के दियों से इंजरियांग असर इन फिर में वजीर डॉक्टर एस जय शंकर द्री नफल्लगा भूटानी जखमाइसी सरकारी जिक्स खोरी का योतेन जिक्स खोरी वास्ता डॉक्टर जय शंकर इस भूटानी फिर में वजीर लियोनो डीएन डंगियाल लंगियां बो फियोक्स ने स्पष्ट पेरा अंता चाइन जरह सरसत ध्याना चौसला भूटानी बादशाह दोना भूटानी वजीर आजम नास पेरा अंता चाइन जरह से रेन फिर में विजारत इस दी जिक्स खोर पो बाहर अदना भूटानी बारियां लोसो थोगने क्रिमसन सगे गिरजा नजम से योतेन जरेन दीतोन पो युलिंग के बारे में दफ्तर नियुक्त कर लक्ष्य पुलिस के तांग से दो बसाओं स्थान पर सो चार इंजरे और सेरेन स्मामी कोबा जनरल धीरज सेठ दिरी नफल्लगा नंग सुपा रूसी सरकारी जिक्स को रिकार लुशा इंजरे जरसत जगमा सुनपा जिक्स को रिवासला जनरल सेठ इस लोकसो स्मामी का रूसी बर्जिश मामी कमांडर इन चीफ एंड्री निकोलाविच मोर्दो रिविच्यू ने एम्बोस पे रन था चाइन खोंगा बाजाविता जोस्ते का गार्ड ऑफ आनर को था से मास्को टोम ऑफ द नून सोल्जर पे का स्ट्रोक्स कोर्स का नुस मक्मी उनला छेस लुक सी बल्टा नुन सगंग अप्रोच चुक चाइन शरगोल हलके काउंसलर मोहम्मद जावीद इस गप्चुन असो मेरे से स्टूडेंट्स एकेडमी अवार्ड प्यंग खुदी शॉर्ट फिल्म पेमीना गोल्ड अवार्ड थपचास पेगा मूल बेग पस्तान जिन जिगमेत वजीर पा मुबारक बात तांस खो आदि थपखन सन पाओ मूल बेगी गमयुल न शरगोल हलका न जिला करगिल सामिन में लद्दाख गांव पुलंगार बे वक्त इंजरन शेसलेन खन एफरून लंग खो कना दीफियोस पे शेसलेन मर्गो सुजरे इजर सेट कसता खबर इंसान से के नमजे इसको लदरीन करगिल और अंगिमा नमजा और थांसल उस यहां दरीन अंगिमी सती थिक पो करगिल और अंगिशुर चाइफी एशारी अर्दून डिग्री सेल्सियस दाना चोसला गंदे सनी सती थिक पुर्चु एशारी अर्दून डिग्री सेल्सियस और तक्स नवास लैदरी इंगिमी सती थिक पो चुर्गु एशारी अर्गिया डिग्री सेल्सियस यंगंदे सनी सती थिक पो त्रुग एशारी एच पी डिग्री सेल्सियस और तक्स नवास द्रास लदरीन इंगिमी सती थिक पो इंचुर चक्सुम डिग्री सेल्सियस दुना गंदे सनी सती थिक पो चुक्सुम डिग्री सेल्सियस और तक्स नवास पदुमा दरी इंगिमी सती थिक पो इंचु डिग्री सेल्सियस यंगंदे सनी सती थिक पो त्रुग एशारी अख डिग्री सेल्सियस और तक्स नवास द्याना चोसला खला चैदरी इंगिमी सती थिक पो इंचुर चगा एशारी एच पी डिग्री सेल्सियस दुना गंदे सनी सती थिक पो चोगा एशारी सुम डिग्री सेल्सियस और तक्स नवास गिलित लगिरी इंगिमी सती थिक पो इंचुर चारगु एशारी अंगिस डिग्री सेल्सियस दुना गंदे सनी सती थिक पो चुरगु एशारी और दुन डिग्री सेल्सियस तक्स नवास दिन इनमिन दरे सकपे पुरगी खबरुन गाइजिन छस देबोस यशु खुदा

0: नहीं जा रही, लेकिन पूरी तरह मुझे पूरी उम्मीद है दोबारा जो हमारा बजट इजलास आ रहा है जो, उसको पूरी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम बहुत आगे बढ़े हैं इस सिलसिले।
1: इसी दौरान असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने आज डाक बंगला बारामूला में अवामी राबताकारी की पहल के तहत असेंबली इजलास की शुरुआत से कबल जमीनी सतह पर आवाम से बातचीत करने की एक पहल शुरू की। आज के प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के बारामूला, कपवाड़ा और बाणीपुरा अजला के समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से बात करते हुए सुनील शर्मा ने उन्हें यकीन दिलाया कि इजलास के दौरान अवामी मसाइल को भरपूर तरीके पर उजागर किया जाएगा। बाकी खबरों से पहले ये तिजारती वक्फा।
2: लूकन हिस्ट्री के लूकन हिंदान टीवी मुखालिफ भारत अभियान चासी टीवी बीमार हिज निशानी ताप सीनस दग थक सित खून यून रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गसुन तो बहक तिशी टीबी बीमार हिज अलामत टीबी छुन ला इलाज के तमाम सरकारी मरकजन पे टीबी बापत टेस्ट ते इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयो नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीबी मुक्त भारत अभियान एप पे टीबी हारित मुल्क जेने लुक मफादस मजेरी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
1: अब पेश है बाकी खबरें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एमएसएमई हेल्थ क्लिनिक के कामकाज का जायजा लिया। ये डिजिटल पहल जम्मू कश्मीर भर के एमएसएमईज की निगरानी के लिए वजूद में लाई गई है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा सनत हिरफत को हिदायत दी कि वह स्माल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा करें। चीफ सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि हेल्थ क्लिनिक एमएसएमईज के लिए एक मुअसर प्लेटफार्म के तौर पर उभरना चाहिए। आईजीपी कश्मीर सुजीत कुमार ने आज पीसीआर श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सेंट्रल कश्मीर रेंज की मजमूई सलामती सूरतहाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाईयों में तेजी लाने के साथ साथ अहम मकामात पर नाका चेक बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अमन अमान और अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम लाजमी इकदाम किए जाने चाहिए। मीटिंग में वस्ती कश्मीर के डीआईजी के अलावा बड़गाम, श्रीनगर और गांधरबल के एसएसपीज और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुल्क में मुनशियात के खिलाफ कौमी नक्शराह के तहत 2029 तक कई अहदाफ मुकर्रर किए हैं। नक्शराह के तहत 2029 तक 100 बैन अक्वामी और बैन रियासती नारकोटिक्स नेटवर्क्स को तबाह करने के अलावा 100 मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तार करने का मंसूबा है, जबकि 50 करोड़ से जायद शहरियों को मुनशियात से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों के दायरे में लाया जाएगा। इधर आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में नेशनल रोडमैप ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल 2026-29 और नशा मुक्त भारत के ताल्लुक से पीआईबी श्रीनगर के इश्तराक से प्रोग्राम वार्तालाप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर पीयूष कुमार अंकित ने कहा कि वजीर अजम नरेन्द्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की दानिशमंदाना कयादत में नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई को मिशन मोड के तहत अमलाया जा रहा है। प्रोग्राम में पीआईबी श्रीनगर के डायरेक्टर काजी मोहम्मद सलमान, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा इशफाक अहमद शाह, एमएचए में असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया राजीव कुमार रुस्तागी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद शाह से बात करते हुए पीयूष कुमार अंकित ने कहा,
3: रीजनल मीडिया हाउसेस के थ्रू नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 का वाइडर डिसेमिनेशन वॉज द लार्जर पर्पस। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 10th नेशनल एपेक्स एनकॉर्ड मीटिंग में रोल आउट हुआ है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से एक होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लॉन्च किया गया है टू काउंटर द ड्रग मेनेस इन द कंट्री एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ नशा मुक्त भारत बाय 2029। लार्जर गोल यही है कि मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो ये विजन कंट्रोल डॉक्यूमेंट है ये हम लार्जर पब्लिक तक पहुंचाएं, इसका वाइडर डिसेमिनेशन करें और जो इसके एक इंटीग्रल पार्ट है इस डॉक्यूमेंट का जो है डिमांड एंड हार्म रिडक्शन, जहां पे हम अवेयरनेस को एम्फसाइज कर रहे हैं टू मेक यूथ अवेयर अबाउट द इल इफेक्ट्स।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर, वेव्स ओटीटी प्लेटफार्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharti.gov.in के अलावा डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। पूरे मुल्क में स्वच्छता ही सेवा मुहिम कल से शुरू हो रही है और ये 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान सफाई सुथराई से मुतलिक अहदाफ को हासिल किया जाएगा और स्वच्छता से समृद्धि तक के नजरिए को फरोग दिया जाएगा। इसके साथ साथ अहम मकामात को साफ करने में नौजवानों की शराकतदारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस साल इस मुहिम का

फौजी बा जय हिंद। फिल्म नगमो पर मबनी आपका मनपसंद प्रोग्राम फौजी बाहियों के लिए लेकर फिर एक बार आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन फयाज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह प्रोग्राम हर शाम

मोहब्बत की हर चीज अनोखी है। मोहब्बत में कभी रोटना कभी मनाना दिल के चाहत बन जाते हैं। सच तो यह है, मनाना भी तो जज्बा मोहब्बत है।

अगर कोई छोटी छोटी बात पर हमसे रूठ जाए तो समझ लेना कि उससे प्यार की बहुत जरूरत है। दोस्तों, रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, चलिए इसी तर्ज पर और एक नगमा सुनिए।

दोस्तों, दिल तो नहीं चाहता है कि आपसे विदा लें, मगर क्या करें, वक्त साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, सुनना न भूलिएगा फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम मेरी पसंद, हर शाम 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो कारगिल से। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन फैज को इजाजत दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम भोजी बायों के लिए समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर आकाशवाणी करगिल की आवाज से।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बदलो बदलो आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते।
5: बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार कर

0: करे तो आरबीआई के ओम्बड्समन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा, 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है, सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीम शुदा अदारों से ही ले, और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, तनख्वाह एडवांस में भेजी है।
3: आरबीआई कहता है
4: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन, शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने

0: पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रूपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रूपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CFC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट

युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है।

0: में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODA प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता ही सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से थे। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा,

0: ಹಂಸ ಗೀತೆ, ಅಂಕುರ್, ಮಂಥನ್, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್, ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಔರ್ 250 ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ನೇ ಅಪ್ನಿ ಅನೋಖಿ ಛಾಪ್ ಛೋಡಿ ಹೈ. ಅಭಿನೇತಾ ನೇ 5 ದಶಕ ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಸಫರ್ ಮೇ ಕೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಯಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೋ ಆಜ್ ಯೇ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಸುಧೀಂದ್ರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಾಚಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंतनाग को बधाई दी है. श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है. सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है. श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी. नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं. श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया. सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी. इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया. भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की. छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई. इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी. आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra

0: life, I believe that Seva Sankalp Abhiyan is not merely a program, but a firm conviction and resolve to connect every section of society through service, cooperation and participation.
1: The party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality. The Prime Minister's birthday tomorrow will be observed as Seva Divas, and blood donation camps will be organized across the country. An Ashirwad Ka Diya program will be held in the evening tomorrow, under which families, particularly beneficiaries of government schemes, will light lamps as a gesture of gratitude for Mr. Modi's 25 years in public service. Jal Shakti Minister C.R. Patil, along with Minister of State for Jal Shakti V. Somanna and Minister of State for Housing and Urban Affairs Token Sahu, today launched the Swachhata Hi Seva campaign. The theme of this campaign is Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat Vikasit Bharat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of Northeast India tomorrow. The IMD has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Chiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. That is all in the news at night. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनातों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 झीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुल्जिमीन को सजाए मौत सुनाई है। और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के नाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनतों की बड़े पैमाने पर

0: कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत की तारीफ की और उन्हें अवामी बहबूद को सही मायनों में तरजीह देने वाला रहनुमा करार दिया।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी ने अवामी खिदमत के अपने 25 साल में भारत के हर शोबे की काया पलट की है। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने जल शक्ति के वजीर मुमलिकत वी सोमन्ना और मकानात और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत तोखान साहू के हमरा आज स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज किया। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। आज शाम तारूफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस साल की मुहिम 5 अहम सुतूनों पर मरकूज है। इनमें अवामी मकामात की सफाई सुथराई, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि के मकासद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खेज मवाद और मनुष्यात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा ये नौजवानों को भड़काने और मुजरिमीन को दहशतगर्दी की जानिब माइल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी किया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरकावाराना हम आहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाया किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए के तहत उसने यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खासतौर पर तशवीश का बायस है, क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुश्तपनाही वाले यमन के हूसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया और उसे तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूर इकदाम करेगा। इस दौरान हूसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया है। कल सऊदी अरब की सिविल डिफेंस ने कई अलर्ट जारी किए थे। अलबत्ता उसने बहरे अहमर में अपने अहम ऑयल पोर्ट यांबू समेत 6 शहरों में इन अलर्ट्स को हटा भी लिया था। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने थिम्पू में अपने भूटानी हममनसब लियोनोपो डीएन ढुनग्याल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर तावुन का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में तरक्याती शराकतदारी, तवानाई, तिजारत, राबता, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबित समेत भारत और भूटान के कसीर जहती ताल्लुकात को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने झीरामवादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाजे रहे कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन के तहत झीरामवादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। एनआईए की खसूसी अदालत ने 5 सितंबर को बाकी 10 मुलजिमीन को इस मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई गई।

भारत सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड CBFC की फौरी तौर पर असर नौ तश्कील की है, जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने कहा कि 9 तश्कील शुदा बोर्ड CBFC में 18 मेम्बरान होंगे। मस्कूरा बोर्ड CBFC के असर नौ तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इत्तला और नशरियात की वजारत की जानिब से आज जारी किया गया। मशहूर अदाकार अनंतनाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहेब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गरां कदर ताउन के बदले जनाब नाग को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब नाग को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनाकिद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहेब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजमुदाकार अदाकार अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी, हमागीर सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अनमिट नकोश छोड़े हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहिरा किया है और मुनफरिद अंदाज पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि एक मुनफरिद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। हुकूमत ने 3 लाख रुपए तक के सरमाए वाली बरामदाती खेपों को रजिस्ट्रेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना कर दिया है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद नए और छोटे बरामदकारों के तकमीली अमल के बोझ को कम करना और तामीली अमल के बोझ को कम करना और पोस्टल, कुरियर और दीगर उभरते हुए चैनल्स के जरिए बरामद के अमल में आसानी पैदा करना है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी CEOs ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने EPFO के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजिमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी करगिल फेसपाहस्क्रिग्रिम रेडियो फीचरी दिरिंग छिरपास नाबिन यखन सरमसुनसेना शर्वनाचुंगमा यांगरेशिक दिलजे पुरी फीचरी छिरपेम फेपसुसना रकासुशित रिंजन यन खानुन लोकसो खातुसोनिका छिरतांसे प्रोजेक्टनि बि फीचरी छिरुनि नांगजोंस दिरिंग आदस यां फेसपा खातुशिगरदामसे देसकोरपेम खसपानी हागोजल्तान नंगेमबो सगे बदबेर लोकसो जोसना श्मियोसुनिका तमछिरुनसा यंतरिंचन स्नान सपस्पेल भी प्रलोभ बचावेत यों ता संभव चिस्कोर मोतुगी निमिंग इंस्पेल न निमर बिब्याबियुनी जंगो स्कातुनी शकिलं ब्रागी आयामुन दोचन शुचेदे निर्चे बरें युलुर्चे चोसे चुपेक निंसत ना लल्चिदे दुक्स फांसे उर्दमु न्याल्चान ना बिनेत संभव नो स्तोम थोपो यं स्निं पं देसाख्यापे तायारेर क्याबना योंगे उर्केलेक सुंशे सर्वी संभव मैं दासना रिहुंसी युल सोने मुक सगेत बदबे सख्यापानी क्यों ना हम बा यंग त्याप लुक्सना प्रेजुस्तान स्मिंग सोचना लुक्से क्यों तो देसाख्यापानी चंगेनी फ्रालुक्सना थेसे कुंगे तोनगुन लुक्सो मुल्टुबगं सख्यापे गना योंगे कोरं कुर्चे मेने मेतना जन्श्मां चुर्मां चेदे ग्रंग रोतला मचावस्वा ngalcha chapche metba pre khongi zos